जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिए नेत्री जगत ने हालिया फसल छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बहता लेकिन बचारिया कर कृपा पार कर।

0: अपराधी दुनाने में जो हंता मृगा है शीश नवाया क्या थी है जर दे कुसुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पुष्पक समादं मुख झूठ भुभुक सारं त्रैपाल तिहार विचारं गल माल आदल गलाटं दोय धोती बसर कपाटं जे जानस ब्रह्म करमं साफोकर निश्चो करमं कहो नानक नेह चो त्यावे विन सतगुर।

हे श्री भगवते जी सहाय वार श्री भगवते जी की पातशाह दसमी प्रथम भगवते सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई ते गवाही देख के आनंद डिठ कीता तना प्यारिया।

गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे के सवासा नाल निभाही तना दी कमाई दा ध्यान तर के खाल सारी बोलो रे वाहे गुरु बोलो दे पंजा तखतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो रे वाहे गुरु बोलो दे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खाल

चेते आमन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा दी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय काल से जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रसादान सिर दान नाम दान सिर अमृत सार साहेब जी दे।

दर्शन स्नान चौकिया चंड बुंगे जुग जुग अटल करम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु से अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दारों करां सिखी सिद्धक परसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को

0: स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: सिर्फ साक्षरता सिक्ख्या नहीं, ना ही ज्ञान सिक्ख्या है, बल्कि विशाल सोच अते स्याणप दा विकास ही सिक्ख्या है।
1: आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ सरवण करो भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 6:55 हो रहे ने, पेश ने संस्कृत समाचार।

0: दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य बैंकिंग परिष्काराणां वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढम् अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्त्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामी स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इस्राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परंपरागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इस्राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने हुण तक दियां कुछ मुख खबरां।

खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली सूझबूझ बुनियादी ढांचा निवेश अते बेहतर डिलीवरी विधियां दे सुमेल ने पिछले दहाके दौरान भारत की आर्थिक ताकत अते लचकीलेपन नूं मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पशु पालन आधारित प्रणालियां विकसित कर रही है अते देहाती आर्थिकता नूं उत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार वालों आउंदी हाड़ी रुत 2026-27 दौरान पंजाब के किसानों नूं वड्डी राहत दिंदियां कणक दे प्रमाणित बीजां दी सबसिडी देण लई 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ मंजूर। सिक्ख्या मंत्रालय ने क्लासिकल भाषावां विच अध्ययन लई 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नूं मंजूरी दी है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि नशियां नूं जड़ों खत्म करन लई पंजाब पुलिस विच 10,000 नवीं असामियां भरियां जाणगियां। गैंगस्टर ते वार मुहिम तहत सूबे च हुण तक कुल गिरफ्तारियां दी गिणती 75,810 हो गई है। पंजाब विच सरकारी नशा छुड़ाऊ अते मुड़ वसेबा केंद्रां विच जल्द ही HIV हैपेटाइटिस बी अते हैपेटाइटिस सी दी जांच लई ट्रिपल एच स्क्रीनिंग शुरू कीती जाएगी। पंजाब कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने अज तरन तारण दाणा मंडी दा दौरा करके झोने दे खरीद प्रबंधां दा जायजा लिया। सूबे च दिव्यांग व्यक्तियों नूं हुण तक करीब 255 करोड़ रुपए की माली सहायता की जा चुकी है। मानसा दे लिंक रोड ते वापरिया भयानक सड़क हादसा, कार डिवाइडर नाल टकराउण कारण मां पुत दी हुई दर्दनाक मौत। यूक्रेन ने रूस नाल संभावित जंगबंदी दी भारत दी तजवीज़ नूं कीव नूं प्राप्त होईयां 4 पेशकशां विचों सब तो वड्डा दस्सिया है। इह सन हुण तक दीआं कुछ मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम जी। की हाल चाल? हाजिर हो गए हैं जी लैके प्रोग्राम सोहनी सवेर। ते भाई, इस सोहनी सवेर, सुगंधित, त्याजी, प्यारी सवेर दी सारिआं नूं मुबारकबाद। तुसी सुन रहे हो जी अपना मनपसंद प्रोग्राम सोहनी सवेर, ते जुड़े हुए हो अपने होस्ट दोस्त गिनीशा दे नाल। जी हाँ दोस्तों, अज 4 अक्टूबर 2026 की खूबसूरत सवेर, चाह दा कप हाथ विच होवे, सवेर दी सैर होवे जां फिर घर दे कम्मां दी शुरुआत, असीं तुहाडे नाल हाँ पूरे 1 घंटे तक। जी वैसे तां असीं तुहाडे नाल रहना ही है 11 बजे ताईं, पर प्रोग्राम सोहनी सवेर दा वेला जी है तुहाडे नाल जुड़े रहण दा, 7 बजे तों लै के 8 बजे तक। ते प्रोग्राम दे विच गल्लां होणगीआं जानवरां दीआं, कुदरत दीआं, अंतरिक्ष दीआं, सेहत दीआं, ते कुछ कहानियां भी तुहाडे नाल सांझियां करांगे जिन्हां दे विच लुकिया होएगा इस खूबसूरत जिंदगी दा एक सबर। दोस्तों, नवी सवेर एक नवा मौका लैके आउंदी है, नवी उम्मीद जगाउंदी है। चलो फिर अज दे दिन दी शुरुआत करदे हां जी, जिंदगी नूं एक नवे नजरिए नाल वेखण वालियां एक कुछ चंद पंक्तियां दे नाल। उठ बंदिया एवें ना हार मन तू, उठ बंदिया एवें ना हार मन तू, जिहड़े मेहनतां दे रस्ते ते चलदे ने उहनां नूं पता है बई हर रात तो बाद सवेर हुंदी है। उठ बंदिया एवें ना हार मन तू, हर रात तो बाद सवेर हुंदी है, ते जिहड़े चलदे ने मेहनतां दे रस्ते ते उहनां दी किस्मत च कदे ना देर हुंदी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करदे रहना चाहीदा है जीवन दे विच, ते बाबा बुल्ले शाह फरमाउंदे ने बई बुल्लिया शाह असानू मिलिया ना रोवां ना पिटां। यानी जदों तुहाडे अंदर संतोख ते सच्ची लगन आ जांदी है ना, तां शिकायतां अपने आप खत्म हो जांदियां। उदों असीं इस खूबसूरत सोच दे नाल अगे वधदे हां और जीवन दे विच सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दा शुकराना अदा करदे हां, क्योंकि शुकराना ही है जिहड़ा सानूं साडी मंजिलां तक पहुँचांदा है।

जी स्वागत है जी एक बार फिर तो प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच इस सोने जे गीत तो बाद और गीत कई बार अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत सुनेहा बहुत ही खूबसूरत संदेश लुको के रखते हैं जिमें कि किन्ना ही प्यारा संदेश है भी अपने जीवन नू प्यार जरूर करना चाहिए है ना क्योंकि जीवन जिहड़ा है ना वो बार बार नहीं मिलता फिर जदों मिलिया है उदो कोशिश करो भी इंसानियत अपने अंदरों कदे भी मरन नहीं देनी आज है जी 4 अक्टूबर और बहुत कुछ अपने अंदर समाई बैठा है दिन भी और ए हफ्ता भी अक्टूबर का यह हफ्ता बहुत ही खास है क्योंकि इस दौरान कई अहम जागरूकता हफ्ते मनाए जा रहे ने अज जी 4 अक्टूबर नू सब तो पहला तो गल करिए भी मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनिमल डे जी विश्व पशु दिवस ए दिन सिर्फ कुत्तियां बिल्लियां या फिर पालतू जानवरों लई नहीं है सगो धरती उत्ते रहिंदे हर जीव लई समर्पित है ए दिन सानू याद दिवांदा है कि जानवर साडी दुनिया दा एक महत्वपूर्ण हिस्सा ने ते उहनां नाल दया ते सतिकार नाल पेश आउणा साडी जिम्मेदारी है सोचो जेकर मक्खियां ना होण तां फिर फुल्लां दी परागण किवें होवेगी जे पंछी ना होण तां कुदरत दा संगीत ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ ਇਸ

43 सेकेंड हो गए ने। एक बारी एक अध्यापक ने विद्यार्थियों नू एक एक गुब्बारा दे दिता ते कहा बई सारे बच्चे इस गुब्बारे ते अपना नाम लिख के एक कमरे दे विच छड के आओ। ते जदों बच्चे कमरे दे विच अपने गुब्बारे छड के बाहर आए ता अध्यापक ने फिर कहता 5 मिनट बाद जाना है तुसी ते 2 मिनट दे अंदर अपना गुब्बारा लभ के विखाउणा है। सारे बच्चे पूरे 5 मिनट हुंदे ही कमरे वल नू दौड़े ते हफरा तफरी मच गई उत्थे, पर लभ कोई ना सकिया अपने नाम दा गुब्बारा। अध्यापक ने दोबारा उन्हां नू इंस्ट्रक्शन दे दित्तियां, दोबारा कहा बई जिन्हों जिहड़ा गुब्बारा मिले वह चक लो ते उस दे मालक नू दे दिओ। जिदां ही यह अनाउंसमेंट सुनी बच्चिया ने ते 2 मिनट दे विच ही सब दे हाथ विच अपना गुब्बारा सी। फिर अध्यापक ने समझाया बच्चों नू बड़े ही प्यार नाल बई बच्चो खुशी भी इन्हों गुब्बारिया वाग हुंदी है। जदों असी सिर्फ अपनी खुशी लभदे हाँ ना तो कई बार वो नहीं मिलती, पर जदों दूजिया की खुशी का कारण बनते हाँ तो अपनी खुशी अपने आप मिल जाती है। कहते जिहड़ा इंसान दूजे लई राह विच दीवा बालदा है उसका अपना राह भी रोशन हो जाता है। इस करके कहा बई बाबा बुले शाह ने बई मस्जिद टहंदे मंदिर टहंदे टहंदे जो कुछ तेरे को टहंदा, मस्जिद टहंदे मंदिर टहंदे टादे जो कुछ तेतों टहंदा, पर दिल ना टावी किसी बंदे दा दिल विच दिल भर रहिंदा। बिल्कुल, और दिल भर वह परमात्मा वह परमेश्वर है जिन्हें सानू यह मत बख्शी है बई असी अपनी खुशी के नाल नाल दूजिया की खुशी का भी ध्यान रखना है ना। तो दूजिया की खुशी का ध्यान रखते हुए अपने आप नू भी इग्नोर नहीं करना। सब तो पहला खुशी उदी सोचनी है जिहड़ा तुसी रोज़ शीशे दे विच मुस्कुराउंदा होया शख्स देखदे हो।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
5: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे।

0: प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
2: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान की नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9

0: Website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कई संसदी कमेटियां नूं मुड़ गठित कीता है अते नवे चेयरपर्सन नियुक्त कीते ने। सिक्ख्या मंत्रालय ने शास्त्री भाषावां दे अध्ययन लई 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करन नूं मंजूरी दे दित्ती है। भारत ने पाकिस्तान तों जारी अवैध घुसपैठ का सख्त विरोध किया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यकारी चार्ज अफेयर्स नूं तलब किया। 19वां प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन अगले साल 7 to 9 January तक कोलकाता विच कराया जाएगा। ते जापान दे नगोआ च अज एशियाई खेडां दा शानदार समाप्ति समारोह औरत निशानेबाज नीरू टांडा होण के भारत दे झंडा परदार। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कई संसदी कमेटियां नूं मुड़ गठित कीता है अते नवे चेयरपर्सन नियुक्त कीते ने। भाजपा के संसद मैंबर भर्तृहरि मेहताब नूं फाइनैंस कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के संसद मैंबर शशि थरूर विदेश मामले की कमेटी की प्रधानगी करेंगे। भाजपा के संसद मैंबर सुधीर गुप्ता रेलवे कमेटी की प्रधानगी करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार नूं रसायण ते खाद कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी खेतीबाड़ी पशुपालन अते फूड प्रोसैसिंग कमेटी की प्रधानगी करेंगे। भाजपा के संसद मैंबर राधामोहन सिंह रक्षा कमेटी की प्रधानगी करेंगे। भाजपा के संसद मैंबर राजीव प्रताप रूडी पानी वसीलियां बारे कमेटी की प्रधानगी करेंगे, जबकि कांग्रेस के संसद मैंबर सप्तगिरी उल्का देहाती विकास अते पंचायती राज कमेटी की प्रधानगी करेंगे। भाजपा के संसद मैंबर निशिकांत दुबे नू संचार अते सूचना तकनालोजी कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इन्हां कमेटियां का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तरीक नू शुरू होया सी। सिक्ख्या मंत्रालय ने शास्त्री भाषावां दे अध्ययन लई 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करन नू मंजूरी दे दित्ती है। उच्च सिक्ख्या विभाग मुताबिक ये सेंटर शास्त्री असमी, शास्त्री बंगाली, शास्त्री मराठी, शास्त्री पाली अते शास्त्री प्राकृत दे अध्ययन लई समर्पित होणगे। ये सेंटर इन्हां भाषावां ते उच्च पदरी खोज करनगे अते उन्हां दे साहित्यक अते भाषाई विरसे नूं सुरक्षित रखण अते डिजिटाइज करन लई वी काम करनगे। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस असाम विच तेजपुर यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल विच विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पुणे विच पोस्ट ग्रैजुएट डेक्कन कॉलेज अते खोज संस्थान, उड़ीसा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी अते गुजरात की केंद्रीय यूनिवर्सिटी विच कायम कीते जाणगे। ये सरकारी पहल भारत दीआं शास्त्री भाषावां ते अध्ययन खोज ते संभाल नूं उत्साहित करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नवी दिल्ली विच भारत रूस संबंधा बारे सलाहकार कमेटी की मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग विच कल डॉ जयशंकर ने भारत अते रूस के बहुपक्षी सहयोग के वख-वख पहलुआं ते चानना पाया, जिस विच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, सभ्याचार अते लोकां तों लोकां दे संबंध शामिल ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष नूं खत्म करन लई गलबात अते कूटनीति लई भारत की सरगर्म हमायत का भी जिक्र किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यकारी चार्ज अफेयर्स नूं तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान तो चल रही गैर कानूनी घुसपैठ से सख्त विरोध दर्ज कराया है।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सैक्टर में शुक्रवार की घटना संबंधी पाकिस्तान के इल्जामों नूं बेबुनियाद करा दिता है। विदेश मंत्रालय मुताबक 3 व्यक्ति पाकिस्तान तो भारतीय सरहद विच दाखिल हुए सन। सरहदी सुरक्षा बल BSF ने उन्हां नूं वार वार वापस जाने की चेतावनी दिती, पर वह सरहदी वार वल वधदे रहे। जदों उन्हां ने सुरक्षा लई खतरा पैदा किया तो BSF नूं उन्हां विरुद्ध कार्रवाई करनी पई। भारत ने कहा कि अजिहियां घटनावां पाकिस्तान तो लगातार घुसपैठ अते तस्करी नूं दर्शाउंदियां ने। भारत ने पाकिस्तान नूं घटनावां अते नशीले पदार्थां दी तस्करी दी जांच करन अते अपने सरहदी सुरक्षा बलां दी भूमिका ते कारवाई करन लई कहा है। पाकिस्तान नूं अंतरराष्ट्रीय सरहद दा सत्कार करन अते अपने पासिओं गैर कानूनी आवाजाई नूं रोकण लई प्रभावशाली कदम चुकण लई वी कहा गया है। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: 19वां प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन अगले साल 7 to 9 January तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता विच कराया जाएगा। विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग नाल ये सम्मेलन करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन

0: करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे ते समाप्ति सेशन की प्रधानगी करेंगे। सम्मेलन दौरान युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी होगा। ये दुनिया भर के भारतीय मूल के नौजवान कारोबारियों पेशेवर सिक्ख्या शास्त्रियों एक मंच प्रदान करेगा। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा एक्स एंड एल एट द रेट AIR आरएनयू जलंधर। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के आने वाले आजादी दिवस समारोह दौरान रवायती रस्मी ज्योति जगाने लिए सद्दा दिता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन मचार नाल फोन से गलबात की और उनकी हिम्मत की शलाघा की। उन्होंने कैप्टन मचार को भारत इजरायल और पूरी दुनिया का नायक कहा। नेतन्याहू ने कैप्टन मचार के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की कामना की और उन्होंने परिवार को अपन शुभकामनावां दित्तियां। यह सम्मान विशेष है क्योंकि इजरायल में आजादी दिवस से ज्योति जगाने का सम्मान आम तौर पर सिर्फ इजरायली नागरिकों को दिता जाता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़िशकियन ने कहा कि वधदे अमरीकी आर्थिक दबाव ते पाबंदियां दरमियान ईरान ने एक नवा सिस्टम अपनाया है। सोशल मीडिया से राष्ट्रपति पज़िशकियन ने कहा कि अमरीका ते उसके सहयोगी ईरान की आर्थिकता ते दबाव पाउण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोशिशों का सामना जनतक हमायत ते सरकारी यत्न नाल कीता जा रहा है। अमरीका ईरान की आर्थिकता ते माली नेटवर्कों ते लगातार पाबंदी ला रहा है। अमरीका का दावा है कि यह आर्थिक नेटवर्क ईरानी सरकार ते इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की हमायत करते हैं। भारतीय हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज नवी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विखे दूजी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को हरी झंडी देकर रवाना किया। यह मैराथन भारतीय हवाई फौज के परमवीर चक्र जेतु फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो की याद विच कराई जा रही है। मैराथन का उद्देश लोगों को तंदुरुस्ती हौसले और राष्ट्रीय एकता वल प्रेरित करना है। इस विच 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दियां दौड़ां शामिल होणगियां। जेतुआ 1,00,000 रुपये तक के नकद इनाम मिलने। फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग विच बहादरी दिखाई। श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए उन्होंने 6 पाकिस्तानी सेबर जेट हवाई जहाजों नाल मुकाबला किया। उन्होंने बहादरी और कुर्बानी को अज भी याद किया जाता है। 2026 एशियाई खेडां अज खत्म हो रही ने। समाप्ति समारोह जापान के नागोआ शहर के मिजुहो पार्क एथलैटिक स्टेडियम विच होएगा। यह समारोह भारतीय समय मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होएगा। भारत ने इस साल शानदार कारगुजारी दिखाउंदियां कुल 85 तमगे जीते ने। इन्हां विच 21 सोने ते 27 चांदी दे अते 37 कांसी दे तमगे शामिल ने। भारत तमगा सूची विच चौथे स्थान ते रहा। औरत निशानेबाज नीरू टांडा समाप्ति समारोह विच भारत दे झंडा बरदार होणगे। वो तिरंगा लैके भारतीय दल की अगवाई करेंगे। पहला कल एशियाई खेडां विच हॉकी ते क्रिकेट विच भारत ने सोने दे तमगे जीते। इन्हां जित्तां नाल देश भर च खुशी दी लहर है। भारतीय हॉकी टीम दे कप्तान हरमनप्रीत सिंह दे पिता श्री सरबजीत सिंह ने इस जित ते आकाशवाणी नाल अपनी खुशी सांझी की थी।
1: बड़ी खुशी आ, टीम ने गोल्ड मेडल जितया, बड़ी खुशी हुई आ भी दोवां टीमां ने गोल्ड मेडल जितया ते असीं ते बहुत खुश आ। बड़ी खुशी हुंदी पिंड नूं, आम पिंड दे विच उड के एड्डी दूर प्लेयर पहुंचे।
0: रवायती विरोधी पाकिस्तान नूं फाइनल विच हरा के सोने दा तमगा जित्तण वाली भारतीय क्रिकेट टीम दे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दे पिता श्री राजकुमार शर्मा ने भी आकाशवाणी नाल आपनी खुशी सांझी कीती। जिक्रयोग है कि अभिषेक शर्मा दे पिता उन्हां दे कोच भी ने। उन्हां कहा,
2: खुशी का दिन है, एशिया गेम दे विच गोल्ड मेडल लिता और बड़ी बहुत बहुत मुबारक, और जिन्हें भी प्लेयर सारे ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करके ये आज गोल्ड कप जीता। BCCI को बहुत बहुत मुबारक और उन कोचेस को और मैनेजमेंट जितनी भी स्पोर्ट स्टाफ है उन्होंने सारे ने बड़ी अच्छी टीम तैयार करके इंडिया ने मैच जिताया। ये बहुत बहुत मुबारक सभी प्लेयरों नु।
0: भारत की औरतों की हॉकी टीम का जापान विच एशियाई खेडां तो जेतू वापसी तो बाद बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे से जश्नां नाल स्वागत किया गया। भारत की औरतों की टीम ने 44 साल के वक्फे तो बाद देश लिए एशियाई खेडां का सोने का तमगा जितया है। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ने वेस्टइंडीज़ विरुद्ध 3 मैचों की 1 रोजा लड़ी 2-1 नाल जित ली है। आखिर च खास खबरां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कई संसदी कमेटियां नूं मुड़ गठित कीता है ते नवे चेयरपर्सन नियुक्त कीते ने। सिक्ख्या मंत्रालय ने शास्त्री भाषावां दे अध्ययन लई 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करन नूं मंजूर कीता है। भारत ने पाकिस्तान तो जारी अवैध घुसपैठ का सख्त विरोध कीता है। पाकिस्तान हाई कमीशन दे कार्यकारी चार्ज अफेयर्स नूं तलब कीता है। ते जापान दे नागोआ च अज एशियाई खेडां दा

0: शानदार समाप्ति समारोह औरत निशानेबाज नीरू टांडा होंगे भारत के झंडा बरदार। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 8:40 हो रहे ने। आओ सरवण करो मसीही भजन।

0: निगरानी कीती जा सकती है। जलवायु परिवर्तन नूं समझण ते कुदरती स्रोतां दी बेहतर योजनाबंदी विच इह जानकारी बहुत ही लाभदायक है। पर पुलाड़ दीआं अपणीआं चुनौतियां वी ने। पुलाड़ विच वध रहे स्पेस डैबरी अर्थात पुराने सैटेलाइटां ते रॉकटां दे बचे होए टुकड़े सरगर्म उपग्रहां ते भविख दे पुलाड़ मिशनां लई खतरा बन सकते ने। इस लई पुलाड़ दी सुरक्षा ते टिकाऊ वरतों लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग ते जिम्मेवार व्यवहार जरूरी है। विश्व पुलाड़ हफ्ता विद्यार्थियों विच विज्ञानिक सोच पैदा करन दा वी वधिया मौका है। स्कूलां ते कॉलेजां विच पुलाड़ विज्ञान नाल संबंधित लैक्चर क्विज मॉडल मुकाबले तारा दर्शन ते प्रदर्शनियां करवाईयां जा सकदियां ने। नौजवानां नूं इह समझाउणा जरूरी है कि पुलाड़ विज्ञान सिर्फ विज्ञानियां दी पुलाड़ यात्रियां दा खेतर नहीं सगों भौतिक विज्ञान गणित कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाटा साइंस ते कई होर खेतरां नाल जुड़िया होया है। 4 तो लैके 10 अक्टूबर दा विश्व पुलाड़ हफ्ता सानूं इह सुनेहा दिंदा है कि पुलाड़ दी खोज सिर्फ नवे संसार लब्भण लई नहीं सगों अपनी धरती नूं होर चंगी तरह समझण ते आउण वालियां पीढ़ियां लई सुरक्षित बनाउण लई भी है। विज्ञानिक सोच नवीनता ते अंतरराष्ट्री सहयोग राहीं मनुखता पुलाड़ दे असीम भेतां नूं समझण दे नाल नाल धरती ते जीवन नूं होर बेहतर बनाउण वल भी अगे वध सकती है। ए सी विश्व पुलाड़ हफ्ते बारे जानकारी।
1: हर साल 4 अक्टूबर नूं विश्व पशु दिवस मनाया जांदा है। इह दिन सानूं याद करवाउंदा है कि धरती सिर्फ मनुखां दा घर नहीं सगों अणगिणत पशु पंछियां अते होर जीवां दा वी सांझा आवास है। विश्व पशु दिवस दा मुख उद्देश जीव जंतुआं दी भलाई सुरक्षा अते उनां प्रति मनुखी जिम्मेवारी बारे जागरूकता पैदा करना है। इस लई दुनिया भर विच पशु भलाई नाल संबंधित संस्थावां स्कूल समाजिक संगठनां अते लोकां वल्लों वख-वख गतिविधियां करवाईयां जांदियां हन। विश्व पशु दिवस दे इतिहास दी गल करिए तां इस विचार दी शुरुआत हाइनरिक जिमरमैन ने कीती सी। उन्हां ने 24 मार्च 1925 नूं बर्लिन विच वैला विश्व पशु दिवस समागम करवाया जिस विच लगभग 5,000 लोग शामिल होए। बाद विच 1929 विच इस दिवस नूं 4 अक्टूबर कर दिता गया जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी दा त्यौहार भी है अते जिन्हां नूं जीव जंतुआं अते कुदरत प्रति प्यार नाल जोड़िया जांदा है। मई 1931 विच फ्लोरेंस विच होई एक कॉन्फ्रेंस दौरान 4 अक्टूबर नूं विश्व पद्धर ते पशु दिवस वजों मनाउण दे प्रस्ताव नूं स्वीकार कीता गया। पशु साडे जीवन दा अटुट हिस्सा हन। मझां बकरियां घोड़े कुत्ते बिल्लियां अते होर घरेलू पशु मनुखी जीवन विच सिद्धी भूमिका निभाउंदे हन। इसे तरह जंगली जीव कुदरती वातावरण दा संतुलन बनाए रखण विच महत्वपूर्ण योगदान पाउंदे हन। किसी एक जीव दी गिनती विच वड्डी कमी भी पूरे पर्यावरण तंत्र नूं प्रभावित कर सकदी है। अज पशुआं सामने कई चुनौतियां हन। शहरीकरण, जंगलां दी कटाई, कुदरती आवास दा नाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन अते गैर कानूनी जंगली जीव व्यापार कारण कई प्रजातियां खतरे विच हन। मनुखी गतिविधियां ने बहुत सारियां जंगली जीव प्रजातियां नूं विनाश दे कंडे तक पहुंचाया है। संयुक्त राष्ट्र भी जंगली जीवां दी सुरक्षा अते जैव विभिन्नता दी रक्षा लई विश्व पद्धर ते सांझे यतनां दी लोड़ ते जोर दिंदा है। पंजाब दे संदर्भ विच भी पशु भलाई साडी सांझी जिम्मेवारी है। गर्मियां विच पशुआं लई पीण वाला पानी रखना, सर्दियां विच बेसहारा पशुआं लई आसरा देना, जख्मी पशुआं नूं इलाज मुहैया करवाना अते सड़कां उत्ते वाहन चलाउंदे समें पशुआं प्रति सावधान रहना, इह छोटे पर महत्वपूर्ण कदम हन। घर विच पालतू जानवर रखण वाले दी जिम्मेवारी होर भी वध जांदी है। उन्हां नूं सिर्फ मनोरंजन दा साधन ना समझ के एक जीवित प्राणी वजों प्यार, खुराक, सफाई, सेहत संभाल अते सुरक्षित वातावरण देना चाहिदा है। बच्चियां विच भी पशुआं प्रति तरस अते संवेदनशीलता पैदा करना बहुत जरूरी है। जेकर बचपन तो ही बच्चियां नूं सिखाया जावे कि हर जीव नूं दर्द अते डर महसूस हुंदा है तां उह कुदरत अते जीव जंतुआं प्रति वधेरे जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं। विश्व पशु दिवस सिर्फ एक दिन लई पशुओं नूं याद करन दा मौका नहीं सगों साल दे हर दिन अपने व्यवहार ते विचार करन दा संदेश है। आओ असी ए संकल्प लईए कि किसी भी बेजुबान जीव नाल बेरहमी नहीं करांगे, पशुओं नूं बेलोड़ी तकलीफ नहीं देवांगे अते अपने आले दुआले दे जीवां दी संभव मदद करांगे, क्योंकि जिस समाज दे दिल विच बेजुबान जीवां लई दया हुंदी है ओह समाज असल अर्था विच संवेदनशील अते मनुखी हुंदा है। विश्व पशु दिवस ते आओ एक अजिही दुनिया बनाउण दा यतन करिए जिथे मनुख अते होर जीव सुरक्षित सन्मानपूर्वक अते कुदरत नाल संतुलन

नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल जी। मैं गिनीशा हाजिर हाँ लेके प्रोग्राम हैलो फरमाइश जी। चाहते हो अपनी पसंद का गीत सुनना, वो भी अपनी फेवरेट रेडियो चैनल ते राही, तो फिर करना की पेगा जी, करना पेगा एक नंबर डायल जी। चाहते हो अपनी पसंद का गीत सुनना, तो फिर आकाशवाणी नू ही चुनना, ते डायल करना जी नंबर 0181-2342-173। डायल करके इस नंबर नू शिरकत करनी है प्रोग्राम दे विच, ते इंजॉय करना है अपने पसंदीदा हिंदी गीत नू जी। जेड़े तो दो सैनल जुड़े हुए ने, वो जानते ने भी 0181-2342-173 है सफलता की कुंजी बई अपनी फरमाइश नू पूरा कराने लई। लेकिन जिन्होंने अज पहली बारी ट्यून इन किया है, जेड़े पहली बारी जुड़े ने, उन्होंने दस दईए बई 0181 ये साडा जलंधर का एरिया कोड, ये लगाना बिल्कुल ना भुलना जी 2342-173 दे अगे डायल करके शिरकत करनी है प्रोग्राम दे विच, ते इंजॉय करना है अपने पसंदीदा गीत नू। लो जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गीत दे नाल, ते तुसी फटाफट ट्राई करो 0181-2342-173।

खुद के पल निकालिए और कभी खुद से भी मिला कीजिए जी। सब तो वड्डा इंसान दा जड़ा दोस्त है ना, सब तो वड्डा कह लो वेल विशर, वो इंसान अपने आप दा ही हुंदा है। इस करके कोशिश करया करो बई, सुनो सब की ते करो मन की, उहदे चो फाइंड आउट करो भी केड़ी चीज़ तुहाडे लई चंगी है ते उहदे नाल ही अगे वधदे रहो।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी दी दौड़ विच असी अक्सर चीजा भूल जांदे हां। बहुत चंगा लगता है जदों तुहाडा कोई ख्याल रखता है, जिवें आरबीआई ख्याल रखता है तुहाडी अनक्लेम्ड जमा राशि दा।
3: अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब ओ बैंक खाते जिन्हां विच 10 साल जां उस तों वध समय लई कोई लेनदेन नहीं कीता होवे। ए खाते आरबीआई दे डीईएफ फंड विच जमा हो जांदे हन। अपने बैंक दी किसी भी शाखा विच जाओ अते अपना केवाईसी अपडेट करवाओ अते अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापस प्राप्त करो। आरबीआई कहंदा है, जानकार बनो, सतर्क रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इना शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
6: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समें विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समें दा ध्यान रखण।
7: हेलो,
8: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे।

0: यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम हेलो फरमाइश विच।

0: जी बिल्कुल, पंख होते तो उड़ाती रही। कई बार इदा हुंदा है वी जदों पंख लग जाण, किसी की याद आ जाए तो जी करे उन्हूं मिलना चाहते हाँ, तो उम्मीद यही करते हैं भी साढ़े भी पंख लग जाए तो उड़ के फटाफट वो कोल पहुँच जाइए। पर अजकल टेक्नोलॉजी इन्नी एडवांस हो गई है भी असी एक कॉल की दूरी पर होंगे एक दूसरे तो, है ना। लो जी, कॉल मिला के नंबर डायल करके साढ़े कोल पुजे ने कॉलर दोस्त, गल करते हैं उन्होंने नाल ते जानते हैं कौन ते कित्थों बोल रहे हैं। हैलो,
1: नमस्कार भैन जी।
0: नमस्कार जी, जानना चाहवांगे कौन ते कित्थों बोल रहे ने।
1: मैं रणधीर सिंह बांगड़ गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से जी।
0: जी बांगड़ साहब, स्वागत है प्रोग्राम हेलो फरमाइश विच।
1: मैं आकाशवाणी के प्रोग्राम बहुत प्यार से सुनता हूँ जलंधर से।
0: जी शुक्रिया जी, शुक्रिया।
1: और मैं आया भी हूँ इसमें आकाशवाणी में जी।
0: अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो
1: इसे मिल के गया था।
0: जी जी जी, तो अभी तो आपकी कॉल पहुंची आकाशवाणी के पास। अब ये बता दो गीत कौन सा सुनेंगे।
1: ये फांसी फिल्म का लगा दे जी, जब आती होगी याद मेरी।
0: ठीक है जी, गीत हाजिर है रेडियो सेट पे।
1: मेरा दोस्त आए एक
0: जी
1: सुरजीत आए।
0: हेलो,
1: हाँ जी
0: जी, ठीक है जी, गीत हाजिर है रेडियो सेट पे। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद फैन जी,
0: धन्यवाद जी। जी गीत एंजॉय करना है तुसी आकाशवाणी दे जलंधर के अंदर तो।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 863 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਅਤੇ FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीटेक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब

0: के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार तीन लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और लाल सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और पोषित करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह जापान के नागोया शहर में भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हाँ प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनियां फरमाइशां भेजण लई वट्सएप नंबर नोट करो जी 94 65 53 60 77 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी। पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

राजस्थान तो फरमाइश भेजनी धर्मेंद्र छीमपा, कपिल ईशान ते पूजा परिहर, धर्मकोट मोगा तो वरिंदर शर्मा, कमलेश शर्मा, दीक्षा, रोबिन, व्यांश ते इन्हां दा सारा शर्मा परिवार, ऊना हिमाचल प्रदेश तो सुभाष शर्मा, सुदेश, निशांत, अनुराधा, निवान ते निया शर्मा, बटाला तो प्रीति, साक्षी, रोहित, गुड़िया, सुमित ते अमिका, मध्य प्रदेश तो अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा ते राजकुमार, महाराष्ट्र तो साक्षी, अंजलि, बाला साहेब, जयश्री, रामनिवास ते धनंजय, फजिलका तो सोहन लाल राठी, ओम प्रकाश राठी, शगुन, लवकुश वर्मा, शतरपाल सिंह, रजिंदर सिंह, बब्बू सिंह ते काका पट्टी, छत्तीसगढ़ तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता ते रुद्र वर्मा, अबोहर तो जसपाल भारती, वीना भारती, सुरेंद्र, मनदीप, डिंपल, युवराज ते हैप्पी हरप्रीत। फरमाइश कर रहे ने जी हरजीत हरमन की आवाज़ विच गीत सुनने दी। आओ इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ हरजीत हरमन की आवाज़ विच ये गीत।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने।

मेन बाज़ार मंडी फाजिलका तो अनमोल चावला, दीपिका चावला, किरना चावला ते सारा ही चावला परिवार फरमाइश भेज रहे ने जी। जलाला दीवाल तो मनदीप सिंह दीपा, सहारनपुर तो जॉन, रोजी, पर्ल ते विलिस, हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा, तपा मंडी तो शमशेर सिंह हांस, सतपाल मान ते चनवीर सिंह, जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप, अर्नव, लाजवंती, अनीता रानी ते सारा ही चथरत परिवार, साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता, जलालदी वाला लुधियाना तो बेअंत सिंह, जी आर पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो, जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा ते भाई सुच्चा सिंह पाठक, छत्तीसगढ़ तो डोमान ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति ते रियांश ठाकुर, संगरूर तो बलजिंदर सिंह, परमजीत पुरवा, मनप्रीत सिंह, फरमाइश कर रहे ने जी गैरी संधु की आवाज़ विच गीत सुनने दी। आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनते हाँ गैरी संधु की आवाज़ विच ये गीत।

अम्बाला तो फरमाइश भेज रहे ने महेंद्र रोयला, रंजीत रोयला, मनी, रूबी, हैप्पी, किरण ते सीमू रोयला। मुकरानपुर तहसील बस्सी पठाना श्री फतेहगढ़ साहिब तो हरीश, प्रिंस, मुस्कान, प्राची, महक, तनमीत, मनी, पीयूष, नेहा अते ओम। फजिलका तो फलक सिंह, राजू, बब्बू, सोनू, अमनदीप। छत्तीसगढ़ तो बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, अकरम हुसैन, प्रिंस, बेगम, इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, सीतामढ़ी तो जमशेदपुर तो मुराहू, देवंती, सुंदर ते सुमन। खंडवा तो अब्दुल हक, डावर, दयाल, मोहम्मद उमर डावर। कृष्ण पारक दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा। फरमाइश कारण है जी दलजीत दोसांझ की आवाज़ में गीत सुनने की। आओ इन्होंने सारे की रली मिली फरमाइश तो सुनते हाँ अज्ज के प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ 35 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਤੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है।

0: क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। आओ हुण सुनदे हाँ प्रोग्राम बाल जगत।

0: प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत के विहड़े दे विच कमाल करते पे ने अपनी खूबसूरत वाली परफॉर्मेंस के नाल। और प्यारे बच्चों, जे तुसी प्रोग्राम ये पहली बारी सुनते पे हो तो तुहानू दस दिए कि यह हर एतवार प्रोग्राम आउंदा है, विशेष करके तुहाडे लई आउंदा है, और आउंदा है मीडियम वेव फ्रीकुएंसी ते, यानी मीडियम वेव 343.6 meters यानी 873 kHz ते, यानी AM फ्रीकुएंसी दे उते ये प्रोग्राम आउंदा है, और ठीक 12:05 ते आउंदा है, और 1 PM तक तुहाडियां खूबसूरत वालियां हाजरियां लगवाउंदा है, तुहाडे मन दी गल करदा है, तुहाडियां कविता कहानियां गीत ग्रुप सोंग सब दी हाजरी तुहाडी आवाज़ दे विच इस प्रोग्राम दे विच लगवाई जांदी है। सो प्रोग्राम सुनते रहो, असी अपना नंबर दसांगे जिदे उपर तुसी अपनी ऑडियो सानू हाई क्वालिटी दे विच व्हाट्सएप करनी है
1: जी। और जो ये खास प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा होंगे तो बच्चे नाल दी नाल तुहानू असी सेहत भरियां गल्लां भी जरूर तो जरूर दसन की कोशिश करते, तुहानू समझाउंदे आ, सिखाउंदे आ, और बहुत कुछ नन्ही कलम तो दे जरिए असी भी सीखते हाँ। और ये सीखना सिखाउणा ही जिंदगी दे विच इस तरीके दे नाल चलदा रहिंदा है, और बहुत कुछ असी पंछियों के कोलों भी सीखते हाँ। जो असी गल्लां बातां घर दे विच करदे आ कि कोई इंसान जिहड़ा है बहुत बीमार रहिंदा है, उसकी हैल्थ ठीक नहीं है, तो एक खास करके बच्चों तुहाडी जिंदगी दे विच एक सेध है कि जदों तुहानू लगे कि कदी भी तुहाडी बॉडी जिहड़ी है वह डाउन लग रही है, तुहाडा पढ़ाई करन लई मन नहीं कर रहा, तो तुसी पंछियां दे कोलों एक बहुत ही सोहना जिहा सुनेहा लै सकदे हो कि तुसी अपनी डाइट जिहड़ी है उहनू कंट्रोल कर सकदे हो, क्योंकि जदों पंछी बीमार हुंदे ने ते उह कुछ भी नहीं खांदे, उह सब कुछ खाणा पीणा छड्ड दिंदे ने, और जदों सानू बुखार हुंदा उहदा मूँह दा टेस्ट कौड़ा हुंदा उह भी सानू एक मैसेज दे रहा हुंदा कि कुछ समय लई मैनू फ्री छड्ड दिओ, मेरी बॉडी दा जिहड़ा सिस्टम है ना उहनू खास तरीके नाल काम करन दिओ, दवाइयां वाल बहुत छेती भज्जा दौड़ी करके रुख नहीं करना, बाकी तुसी अपने हैल्थ एक्सपर्ट्स की अपने पेरेंट्स की सलाह दे नाल ही चलना। ये सिर्फ एक सिलसिला है जिस दे विच असीं खास करके तुहानू गल्लां बातां ते जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सो सिलसिला खास करके चल रहा जी नन्नी कलम तो।
0: ते लो जी, नन्नी कलम दे विच एक तो बाद एक बाल कलाकार आउंदा पिया, और हुण वारी है जी शगुन दी, जिहड़ी बच्चियो तुहानू सुनाएगी राग मधुवंती। और मधुवंती बड़ा खूबसूरत राग है, और ये राग की करते ने तुहाडे मन की हालत नू खूबसूरत कर देंदे ने। ते आओ जी सुनते हैं शगुन की आवाज़ दे विच राग मधुवंती।

0: क्या आप जानते हैं हिंदी को प्राचीनतम भाषा संस्कृत की लाडली बेटी माना गया है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक न जाने कितनी लोक भाषाएं इसमें समाई हुई हैं। इसीलिए तो

जानते हैं रहीम रसखान, न जाने कितने धर्मों के कवि अपने भावों को हिंदी लेखनी में कह गए। इतना ही नहीं, संतों महात्माओं ने भी अपने अनुभवों को इस भाषा में लिखा, इसीलिए तो

0: ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਏ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.newsonair.nic.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
4: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन IIT आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन IIT वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और IIT के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि

0: भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

रात 10:20 ते सुनोगे प्रोग्राम शास्त्रीय संगीत। इस दरमियान समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किते जाणगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब हुण काम की राजनीति अते परिवार केंद्रित राजनीति विचकार स्पष्ट फर्क देख रहा है। फतेहगढ़ चूड़ियां दे कणीके बांगर विखे वड्डी लोक मेले दौरान मुख्यमंत्री ने 90% परिवारां लई मुफ्त बिजली, 10 लाख तक के इलाज, 88% खेतीबाड़ी जमीन लई नहरी पाणी अते मामा भैणां नूं सीधी वित्तीय सहायता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान शासन के लाभों को सीधा लोगों तक पहुँचाते रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महज 4.5 साल में साड़ी सरकार ने कांग्रेस और अकाली शासन के 22 साल नालों वध काम करके दिखाया है। इस बारे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी सांझी की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस में 10,000 नवी असामिया भरन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब युद्ध नशे विरुद्ध अंतिम और फैसलाकुन पड़ा से जंग लड़ रहा है। अपनी तरह की पहली SHOs मिलनी दौरान शानदार कारगुजारी वाले पुलिस अधिकारियों सन्मानित करने करवाए गए समागम दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि पंजाब पुलिस को नशे विरुद्ध हर जायज कार्रवाई करने की खुली छुट्टी दी गई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पिंडों और कस्बों में जान लोगों को नाल लैन और इस लानत से रोक लाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध नशे विरुद्ध हर पूरे पंजाब में लोक लहर बन चुका है, जबकि पुलिस फोर्स में जल्द ही 450 ASI 3400 पुलिस मुलाजम मिलेंगे। पंजाब के खुराक सिविल सप्लाई और खपतकर मामले मंत्री लालचंद कटारू चक ने बीते दिन तरन तारण थाना मंडी विखे झोने के खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार किसानों की मेहनत नाल पैदा की फसल का दाना दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सूबे झोने की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर तो शुरू हो चुकी है। किसानों मंडिया अपनी फसल बेचण समय किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस मौके उन्होंने मंडी में खरीद लिफ्टिंग भुगतान बारदाने समेत होर प्रबंधों का जायजा लेंद्या संबंधित अधिकारियों को लोड़ीदे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने दसिया कि खरीद सीजन दौरान केंद्रीय पूल लिए 180 लाख टन झोने की खरीद का टीचा रखा गया है। पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों सम्मान सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन जीने लिए सहारा देने वास्ते हुण तक करीब 255 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी कर चुकी है। इस बारे जानकारी दिंदिया समाज सुरक्षा इसत्री और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार का मानना है कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के सुपनिया सन्मान और तरक्की के राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस सोच नाल सरकार केवल वित्तीय सहायता ही नहीं सगो दिव्यांग व्यक्तियों आत्मविश्वास स्वयं निर्भरता और समाज में बराबरी नाल अगे वधण का मौका भी दे रही है। उन्होंने दसिया कि इस स्कीम तहत इस वेले 2.84 लाख के करीब लाभपात्रियों नियमित तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है। गैंगस्टरां ते वार मुहिम दे 256 दिन पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में गैंगस्टरां दे साथियों दे पछाणे अते मैप किए गए 592 टिकाणे ते छापेमारी की है। पुलिस टीमों ने 275 व्यक्तियों 16 हथियारों समेत गिरफ्तार किया, जिस नाल मुहिम की शुरुआत तो हुण तक 75,001

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਲੱਕੀ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आओ हुण सुनदे हां जी अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल में कहीं कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। हौसियों ने रियाज में आराम को मरकज को निशाना बनाते हुए मिज़ाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मुकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सफर मुल्क के इदारों, छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों, निज स्टार्टअप इदारों की कुव्वत पर आगे बढ़ेगा। वो आज नई दिल्ली में भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI के 58वें यौमे तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधा कृष्णन ने जोर देकर कहा कि मुल्क सरमायाकारों का भरोसा और एतमाद हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, साथ ही वो तेज़ रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तस्करा करते हुए जनाब राधा कृष्णन ने मुल्क में अच्छे कारपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया।
1: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। वहां मंगल के रोज़ वोटिंग होगी। इन दोनों हलकों में मरकजी फोर्सेज पहुंच रही हैं। इधर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अहलकारों ने पोलिंग से कबल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तलिफ गाँवों में रूट मार्च शुरू कर दिया है। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी श्याम जी कृष्ण वर्मा के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी थी। वज़ीरे आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम उनकी दिलेरी और मादर वतन के वक़ार के तहफ़ के तई उनके पुख्ता अज़्म को हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 खातून सहाफ़ियों की जानिब से पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर जिनसी एतबार से हरासा किए जाने की शिकायतों का मामला मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंक्वायरी की खातिर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया है। ये मुबैना वाक़यात नई दिल्ली के इलाके में कल एहतजाज के दौरान पेश आए थे। उस वक्त पुलिस अहलकारों को अमन क़ानून बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात के लिए ये शिकायतें क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इधर अगले दो दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, नीज शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। यमन की फोर्सेज ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिज़ाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इतलात के मुताबिक यमन की बैन अलाक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसल्ला अफवाज ने दो महाजों पर हौसी कुमक के खिलाफ 97 कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इतलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेस ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय खवातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है, जो आदिति अशोक, परनवी सार्थ उर्स और दीक्षा डागर पर मुश्तमिल है। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पलोमो मिजू स्टेडियम में होगी। ये तकरीब अब से कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगी। भारत की सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते की परचमबरदार होंगी। भारतीय मुक्केबाजों का दस्ता एशियाई खेलों में अपनी शानदार मुहिम के बाद नई दिल्ली वापस आ गया है। अपनी आमद के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मुक्केबाज लोलिना बोरगोहेन ने, जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था, इस बात को उजागर किया कि उनकी इस जीत ने इस संग मील को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में दूसरी बार मुकाबला करने से उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाते हुए सोने का तमगा जीतने का मौका मिला, जबकि सबका खेलों में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था।
1: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहाँ गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा स्पेशल था।
0: भारतीय फिजाइया ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का एहतमाम किया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय फिजाइया की जुनूबी फिजाई कमान की जानिब से आज तिरुवनंतपुरम में वाके लूलू मॉल में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन SIM 2026 का एहतमाम किया गया। ये तंदुरुस्ती और लोगों से राबते के सिलसिले में भारतीय फिजाइया की एक अहम पहल है। ये प्रोग्राम भारतीय फिजाइया के वाहिद परमवीर चक्र याफ्ता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की अजीम कुर्बानी और बहादुरी को याद करने और हुब्बुल वतनी, नज्म व ज़ब्त, जिस्मानी तंदुरुस्ती, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मुल्क के तई खिदमत के जज्बे को फ़रोग देने के लिए मुनक़िद किया गया। खास खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, MSMEs और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उसदे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आओ हुण सुनदे हां जी अज दे प्रोग्राम दा आखरी गीत आतिफ असलम दी आवाज़ विच।

0: ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
4: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक

0: क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
0: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया।

0: है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
1: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
2: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। दोपहर के 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दिस प्रोग्राम विच आओ सुनते हाँ सुखविंदर सिंह सुतांतर कविशर ते साथियों की आवाज़ विच कविश्री।
1: साम्राज्य सरकार ने भारत में अपने राज दे थिड़क दे थम्मां नूं मजबूत करन लई एक सैमन कमिशन नां दा टोला भारत भेजिया, जो 30 अक्तूबर 1928 लाहौर पहुँचया। उसका विरोध करन लई लाला लाजपत राय की अगवाई में जुलूस कढ़िया गया। सैमन कमिशन गो बैक इनकलाब दे नारियां नाल लग्या असमान गूंजण। ये वेख के पुलिस अफसर मिस्टर सैंडरस ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिता है। पुलिस ने पबलिक नूं छलियां वांग कुटिया। लाला जी जख्मी हो गए। अंत 17 नवंबर 1928 नूं पंजाब दा शेर मुंशी राधा कृष्ण दा सपुत्र भारत माता दी गोद विच सदा दी नींदे सौं गया। सरदार भगत सिंह ते साथियां ने सही 1 महीने बाद लाला जी की मौत का बदला लैण का मन बना लिया। ये 5 कौमी परवाने 17 दसंबर 1928 नूं सैक्टरीएट चौंक विच पहुँच गए। 5 बजे छुट्टी का सैरन वजिया। एक अंग्रेज अफसर मोटरसाइकिल ते हो के सवार जिस वेले चौंक विच आया, सरदार भगत सिंह ने मार के छाती विच गोली। लाला जी की मौत का बदला है इस तरह ले लिया।
2: 5 बजे दफ्तर बंद हो ते खड़ गए सैरना, योधे पंज पंजाब दे

हस के सूलिया चढ़ गए अपनी अनख बदले मूरे छातियां तान के खड़ गए अपनी अनख।

रह गए मेरे कम ने अधूरे, देश दा सिपाही बन के मेरी रूह नू विखावे कर पूरे, देश दा सिपाही बन के

ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕਰੇ ਮਾਰੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਇ ਉੱਤੇ ਸਰਜੋ ਬਣ ਕੇ ਪਮੱਕੜ।

0: गुरु साहब जी ने बराड़ा दिया सारिया शर्तां प्रवान कर लिया ते खजराने की ढाब उत्ते मोर्चा मल के बैठ गए। एक पासे बराड़ गभरू ते दूजे पासे माझे वालों आया 500 सिंघां दा जत्था ते तीजे बन्ने सतगुर कलगी वाले पातशाह महाराज तो टिब्बी साहब तो तीरां दी वरखा कर रहे ने। वजीद खां दी फौज ते तीन पासियां तो हो गया हल्ला। आओ तको जरा मैदाने जंग विच गभरूआं दा लोहे ते लोहा है इउं खड़कदा जी।
1: खिदराने दी ढाब ते युद्ध

तजवीज़ नूं चार तजवीज़ां विचों सब तों व्यापक दस्या है। पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस विच 10,000 नवीं असामियां भरन दा ऐलान किया है। पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों नूं सम्मान, सुरक्षा अते आत्मनिर्भर जीवन जीवन लई सहारा देण वास्ते हुण तक करीब 255 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी कर चुकी है। पंजाब दे खुराक, सिविल सप्लाई अते खपतकार मामले मंत्री लाल चंद कटारू चक ने बीते दिनी तरन तारन दाणा मंडी विखे झोने दी खरीद प्रबंधा दा जायजा लिया। गैंगस्टरां दे वार मुहिम दे 256 दिन पूरे हो गए ने। पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच गैंगस्टरां दे साथियां दे पछाणे अते मैप कीते 592 टिकाणियां ते छापेमारी कीती है। पंजाब विच नशियां कारण अते संचारी बीमारियां विरुद्ध चल रही लड़ाई नूं होर तेज करन दे मद्देनजर सरकारी नशा छुडाऊ अते मुड़ बसेवा केंद्रां विच HIV, हैपेटाइटस बी अते हैपेटाइटस सी दी जांच लई HHH स्क्रीनिंग शुरू करेगी। राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी विखे 25 अते 26 सितंबर दी दरमियानी रात नूं विद्यार्थियों वल्लों हंगामे दी घटना दे संबंध विच पटियाला पुलिस ने बीते दिनी हरियाणा अते फतेहाबाद तों एक होर मुलजम नूं गिरफ्तार कीता है। ए सन हुण तक दीआं मुख सुर्खियां। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसीं सुणोगे साडा रोजाना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। स्वागत। प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां सुन रहे सारे ही स्रोतियां दा तहे दिल तों निघा स्वागत करदे हां। दोस्तों, इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं सुणाउंदे हां तुहाडे मनपसंद पंजाबी फरमाइशी गीत जो कि तुसीं सानूं चिट्ठियां दे विच लिख के भेजदे हो ते नाल ही असीं तुहाडे नाम भी प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करदे हां। आओ सुणदे हां प्रोग्राम दा पहला गीत ते उस तों बाद तुहाडियां फरमाइशां दे मुताबिक गीत भी प्रोग्राम दे विच जरूर सुणावांगे।

करणवीर हाउस गुरुगोविंद सिंह नगर पुच्चो कैंचियां तो ने प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण तपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन ते अभिजोत फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो ने गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनवीत ते मनविंदर सिंह पांधा अमनगढ़ तहसील सादुल शहर तो ने कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान हरविंदर मान राजा सिंह मान कुलविंदर कौर मान ते के एस मान प्रिमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो ने बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल पायल वर्मा प्रियांश वर्मा ते ऋषि वर्मा आओ दोस्तों इन्हां सारिआं दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत हरजीत हरमन दी आवाज़ दे विच

पिंड आजमबाला तहसील फजिलका तो ने सोन सिंह निशान सिंह सीरत कौर कीरत कौर ते जसवंत कौर चकला बाजार समाना तो ने पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हसमुख जिंदल ते सारा ही खुशदिल परिवार मसीता डब्बावाली तो ने दर्शन लोट गुरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोट पिंड कुड़ियाणा नेड़े मंडी अरनीवाला तो ने भोला सवांग डॉक्टर अमनजीत सिंह सुखमंदर कौर अमृतपाल कौर रितमन जोत गुरतेश्वर अभिजोत ते गुणताज आओ दोस्तों इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच

बजौनिया तो ने सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक दतरंगी तो ने भागवत वर्मा लिवई तो ने गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर तो ने विश्वनाथ साहू चढ़ डोंगरी पिपरिया तो ने दुर्गा राम साहू मोहम्मदपुर सोतर टानी रतिया तो ने जीवन सिंह शंटी सिमरन कौशल्या रानी गुरशिंदर बब्बू कुलदीप कीरत भूषणखेड़ा जशन बुक ते सारा ही बुक परिवार आओ दोस्तों इन्हां सारयां दी मिलीजुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत सतिंदर सरताज दी आवाज दे विच।

गुरबाणी प्रभु दी उस्तत है, सच्ची सिफत सलाह है, सच्चे दी कीर्ति है। मनुखी मन अते इंद्रियां दा उचित प्रयोग यही है कि इन्हां चंगे पासे लाया जावे। इस नाल समा भी सफल हुंदा है ते इंद्रियां दा परिवार भी सफल हुंदा है, पर यह समा प्रभु दी कृपा सदका ही टुकदा है। सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच पंचम गुरदेव बेनती करदे हुए फरमाउंदे ने, हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिस तरह साधु जन सदा प्रभु दे गुण गा के रस माणदे हन, अमृत रस प्राप्त करदे हन, कृपा करो मेरे लिए भी ऐसा जोग बनाओ कि जिस वेले मेरी रसना भी प्रभु दा नाम उचार सके। हे प्रभु जी, आप जी दी याद सिमरन ही मनुखा जीवन है। जिस उपर प्रभु जी आप मेहर करदे हो, उही आप दी निकटता हासिल कर सकदा है। आप उससे दे ही अंग संग हो जांदे हो। प्यारे जीवन आप जी दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है, ते इस नाम दे दाते प्रभु जी आप ही हो। सृष्टि विच रमे हुए राम नू चेते कीत्या ही संतां प्रभु प्यारिया ने आत्मिक सुख माणिया है, ते ए दात सब किछ जाननहार प्रभु दे हथ विच ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 743 ते फरमान है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। आपे बहुबिद रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। इस तरह ही फरमान है, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी। गुजरी राग विच उचारे हुए शब्द विच पंजवें पातशाह मन नू मोह लैण वाले प्रभु नू प्राणा दा आसरा जिंद जान मंदे ने। उस रंगले प्रभु नू अपने हिरदे विच वस्या जान के उसकी आश्चर्य लीला नू वेखते हुए प्रसन्न हुंदे ने ते हिदायत करदे ने कि दिने राती उस प्यारे प्रभु की आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने मन का हठ त्याग के संतां दी सेवा भावना रख के मन नाल करनी चाहीदी है। उस प्रभु नू जेते कीत्यां मन विचों विकारां दा जंजाल लह जांदा है, मन आनंदित हो जांदा है, उसकी आराधना करनी बनती है। फिर जदों उस नाल मिलाप हो जांदा है तो उस आनंद की महिमा बयान तो परे है। इसे करके फरमान है, दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजे टीला, संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हाठीला। इस शब्द का गायन किया भाई गुरिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: दिन राती आराधो प्यारो निमक न की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हठीला। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने प्रिंसिपल बलदेव सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 478 गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी दे पवित्र मुखवार बंद तो उचारिया होया है। गुरु साहिब जुग्यासु नू संबोधित होंदे हुए फरमाउंदे हन कि हे प्यारे गुरसिखो, परमात्मा का नाम जपो, उसकी आराधना दिन रात स्वास स्वास करते रहो, दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजै ढीला। इन्हां पावन पंक्तियां विच आराधो शब्द आया है जो कि आराधना शब्द तो बनिया है। आराधना पुरातन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है पूजा करना, भगती करना, इबादत करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आराधना शब्द की वरतों गुरु साहिब जी ने बार बार की है, जिमें आराधो आराध आराध्या आराधी। परमात्मा की आराधना करने वाला मनुख आप तो तरदा है, अपने नाल जगत को भी तार दिता है। गुरबाणी का फरमान है जन नानक नाम आराध्या सब जगत तराया। जेड़े

हो प्यारो निमक न कीजे टीला। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन प्रिंसिपल बलदेव सिंह। प्रभु दा जस वड्याई कल्याणकारी है ते उसका हिरदे घर विच वासा पवित्र अवस्था दा सूचक है। राग मारू दे अठ पद्यां वाले शब्द विच जग्यासु वलों बेनती है कि हे गुरु प्यारे हिरदे घर विच आओ ताकि मैं हर जस श्रवणा नाल सरवण कर सकां। तेरे हिरदे घर विच आउण करके मेरा आत्मिक जीवन

दावासा हो जाता है। प्रभु प्यारे भक्तां दी कृपा सदका ही दुर्मत दा नास अते बुद्ध दा प्रकाश हुंदा है। प्रभु दे दर्शन पुनीत कर दिंदे हन अते गर्भ जोन विच आउणा नहीं पैंदा। जिहड़ा जीव प्रभु नूं चंगा लगदा है, प्रभु उस नूं नौ निधियां ते सब शक्तियां प्रदान करदा है। गुरु तो बिना मेरा कोई आसरा नहीं जिस पासे मैं जा सकां। मैनू गुणहीन नूं कोई शरण नहीं दिंदा। संतां दी संगत गुरु दी शरण ही मेरा स्थान है, मेरा ठौर है। मेरी समाई संतां दी संगत विच ही है। हुण तां गुरु ने मैनू अचरज कौतक दिखा दिता है कि मैं मन विच ही उस दे गुण गायन ते सरवण करके आनंदित हो रहा हाँ। आओ जी तू आओ हमारा हर जस श्रवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। इस शब्द गायन की तसी पाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया।

0: मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। पराली संभालन लई मशीनां, इस बारे जानकारी देणगे राकेश कुमार। समाज च पशुआं दी महत्ता बारे जानकारी देणगे डॉक्टर GS बेदी। इस तो अलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:10 ते तुसी सुणोगे प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा दिल्ली केंद्र तों। शाम 7:45 ते वगदे पाणी तहत तजिंदर सिंह पासों तुसी सुणोगे कविता पाठ। रात 8:00 आनंद माणोगे हिंदी गीतां दा। रात 8:10 ते प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जन सेवा तो देश सेवा तक। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट। 9:30 रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 10:00 वीवियां एशियन खेडां विच मुख चलकियां। इस प्रोग्राम प्रसारित होंगे दिल्ली केंद्र तो। रात 10:20 ते शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होएगा। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे BS नारंग दा गाया राग हंस ध्वनि। इस तो अलावा उस्ताद राशिद खान पासो सुनोगे उप शास्त्रीय गायन ठुमरी आजा राधा ब्रज चलो। इस अनाज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो देशभक्ति समूह गाना।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत तेजी नाल तब्दीली दे युग विच दाखल हो रहा है। राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी विखे हाल ही विच होई गड़बड़ी की घटना के संबंध में पटियाला पुलिस वालों फतेहाबाद तो एक होर मुलजम गिरफ्तार। अमृतसर दिहाती पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक गैर कानूनी हथियार से धमाका खेज सप्लाई नैटवर्क को तबाह कर दिता है। हवाई फौज ने आज चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन कराई, जो 2026 एशियाई खेडा जापान के नागोआ में अधिकारित तौर पर समाप्त होंगियां। हुण खबरां विस्थार नाल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि एक विकसित भारत का निर्माण देश दीआं संस्थावां, सूखम, छोटे अते दरमियाने उद्यमां अते स्टार्टअप्स की ताकत नाल ही होएगा। नवी दिल्ली विच इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह विच बोलदे होए उन्होंने कहा कि देश निवेशकां दा विश्वास हासिल करके ही तरक्की कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया दीआं सब तो तेजी नाल वध रहीआं आर्थिकतावां विचों इक है अते तेजी नाल तकनीकी तब्दीली दे युग विच वी दाखल हो रहा है। राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी विखे 25 ते 26 सितंबर की दरमियानी रात नूं विद्यार्थियों वल्लों कीते गए हंगामे की घटना के संबंध में पटियाला पुलिस ने बीते दिन हरियाणा के फतेहाबाद तो एक होर मुलजम नूं गिरफ्तार किया है। उस ते सोशल मीडिया राही विद्यार्थियों नूं भड़काउण अते उकसाउण दे इल्जाम ने। पटियाला पुलिस के एक बुलारे ने दस्सिया कि गिरफ्तार किए गए मुलजम की पछाण पार्थ मेहता वजों हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीजीपी पंजाब गौरव यादव के नाल महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकैडमी फिलौर विखे पंजाब पुलिस परिवार नाल बड़ा खाना भी शिरकत की, सारे रैंकों के अधिकारियों ते मुलाजमान नाल रल के भोजन किया। इस इकट्ठ ने आपसी सांझ एकता अते पंजाब पुलिस परिवार नूं आपस विच जोड़न वाले मजबूत रिश्ते की भावना नूं दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे जनतक सेवा विच 25 साल पूरे हो रहे ने। एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा दे मंत्र अते अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हुंदा है अते इस सिलसिला जारी है। सेवा ते सुशासन दी इस सोच तो प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास अते समाजिक शक्तिकरण राही यह समर्पण लोकां दे जीवन विच बदला लिया रहा है। अज सेवा संकल्प अभियान दी इस विशेष लड़ी विच असीं तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हां कि किवें इस दृष्टिकोण नूं द बैंकिंग सैक्टर क्लीन अप ऑफ बैंकिंग सैक्टर च निपटारे राही अमल विच लिआंदा गया है। होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
1: सिस्टम विच एक वड्डी समस्या सी। कई बार बैंकां वल्लों आर्थिक लोड दे आधार ते नहीं सगो फोन बैंकिंग दे प्रभाव हेठ कर्जे दित्ते जांदे सन। मतलब किसी वड्डे जां प्रभावशाली दफ्तर तो फोन आउण ते बिना पूरी जांच ते पसंदीदा व्यक्ति नूं वड्डा कर्जा मिल जांदा सी। जदों इह कर्जा वापस नहीं

0: पटवारी साहब घरे ही हो।
1: आजो आजो आजो बाल साहब, बच्चे वाले आजो।
0: पटवारी साहब जय हिंद
1: जय हिंद
0: जी।
1: जी, जय हिंद जी। बाल साहब की हाल चाल ने तुहाडा?
0: हाले चाले वाहवा वधिया, चढ़दी कला, मेहर है उस रब दी। असीं तां कहिंदे आं सब ते बणी रहे, तुसीं सुणाओ।
1: तकड़ा जी तकड़ा। देखो तुसी गल कीती है कि मेहर सब ते बनी रहे,
0: हाँ जी
1: बनी भी रहनी चाहिए है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: परमात्मा बहुत बलवान है,
0: हाँ जी
1: लेकिन जो इंसान है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: वो अपनियां गलतियां समझ लो या फिर उन्होंने गुमान आ जाता है,
0: अच्छा जी
1: उसनों आप जो देखते हैं ना, वो पशुओं को भी नहीं बख्शते।
0: ये तो है जी।
1: खास तौर पर जे तुसी गल करो जिवें कुत्ते है, बिल्लियां है,
0: हाँ जी
1: मारन नठते हैं,
0: बेजबान है बेचारे, मूहरे बोलते भी है नहीं वो।
1: बोलते भी है नहीं। ते देखो ना, अज वैसे 4 अक्तूबर नू पूरी दुनिया च,
0: अच्छा जी
1: वैसे ते जड़ा वर्ल्ड एनिमल डे,
0: ठीक है जी
1: पशु दिन मनाया जा रहा
0: ठीक है
1: है
0: जी
1: जी। तो ये वैसे ते जानवरों की जेड़े उन्होंने भी अधिकार होंगे, जिदा आप लड़ते हैं
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: अधिकारों लिए, अपने
0: जी
1: राइट्स के लिए,
0: हाँ जी
1: जानवरों का भी अपने राइट्स है
0: बिल्कुल जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: भी जे असी उन्होंने कुछ खाण पीन तो देना नहीं,
0: हाँ जी
1: असं उन्होंने मारी ही जाना
0: घट्टो
1: है,
0: घट मारीए तो ना
1: घट्टो
0: आप।
1: घट्ट मारीए ना। जे
0: हाँ
1: उन्हों
0: जी
1: हो सके तो माड़ा मोटा, जे देखो उन्होंने खाना दे दो, पानी दे दो,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: मंगते की है।
0: बिल्कुल जी
1: जे वह होणगे तो साडा जीवन है,
0: सही गल है
1: जे
0: जी
1: वह नहीं होणगे तो साडा जीवन नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है
1: इस करके सानू हमेशा ही उन्हों का जड़ा अधिकार है, यानी कि उन्हों का खाना पीना है, उन्हों की तुसी जे ठंड है, जिवें
0: हाँ जी
1: आप देखते ना कई वैसे तो खास ख्याल रखते ने
0: जी
1: पशुआं कुत्तियां दे लिए, खास तौर पर कपड़िया के इंतजाम कर देंगे
0: हाँ
1: ने,
0: जी
1: ठंड के उन्होंने बहन नू सौण नू थोड़ा
0: बिल्कुल
1: बहुत कपड़े रख देंगे ने,
0: जी जी
1: पर ज़्यादातर जड़ा है ये लिए गुरेज किया जाता
0: हाँ जी
1: है जी। तो सानू इस दे लिए थोड़ा जा ध्यान रखना
0: एक
1: चाहिए,
0: इंसानियत के तौर पे ध्यान रखना चाहिए जी।
1: बिल्कुल रखना चाहिए।
0: हाँ जी
1: वैसे तो असं अज पशुओं की गल कर रहे हैं, पर जदों छोटे जड़े पक्षी ने जिवें
0: हाँ जी
1: उन्होंने भी पानी का इंतजाम, गर्मियां हुण तां चलो थोड़ियां ढलदियां पईयां,
0: जी
1: पर गर्मियां दे विच जिहड़े पक्षी ने
0: हाँ जी
1: उन्हां नूं भी पानी का इंतजाम जिहड़ा है वो
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: जी
1: जरूरी है।
0: हाँ जी
1: सानू हमेशा माड़ा मोटा दाणा पानी भी उन्हां नूं जिहड़ा है वो पा के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल जी
1: छोटे पक्षियों नूं भी।
0: जी
1: पर जिवें असीं गल करते हैं ना भी वर्ल्ड एनिमल डे है, तो साडे लई तां खास तौर पर जिहड़े साडे पशु ने
0: हाँ जी
1: उन्हां दी भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
0: जी वो तो है जी
1: देखो गल इदा जी कि साडे जिमीदार भरा वैसे तो खास बहुत ख्याल रखते हैं उन्हों का,
0: हाँ जी
1: पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना जदों
0: हाँ जी
1: पशु जदों फंडर हो जाते हैं
0: हाँ जी
1: उन्होंने छड़ दिता जाता है,
0: बिल्कुल जी
1: जदों उन्होंने छड़ दिता जाता है तो उन्हों की फिर रख रखाव ख्याल कोई नहीं करता।
0: बिल्कुल जी
1: ये भी सानू जिवें संस्थावां तो बहुत बड़ी हैं,
0: हाँ जी
1: पर जिवें आप सड़कों पर छड़

और इनकॉरपोरेशन दोनों का इफेक्ट आ गया, तो वो साड़ी मुताबक उदा झाड़ उदी पैदावार और वो साड़ी जेड़े वातावरण में संभालने लिए और धरती की उपजाऊ शक्ति बनाने लिए स्मार्ट सीडर एक बहुत वधिया मशीन है। तो चौथी मशीन जेड़ी हुण अज की डेट में प्रचलित हो रही है सरफेस सीडर मशीन, ये तीन चार मशीन ने सरफेस सीडर मशीन है कि टोटल मल्चिंग मशीन, टोटल मल्चिंग कर दी है। इसमें कोई भी पराल का हिस्सा जमीन के अंदर इनकॉरपोरेट नहीं करते। तो ये तीन चार मशीन ने जे आप इन्हें सही तरीके नाल वरतों कर लिए तो इन मशीनों के नाल ही आप अपने जो पराल में संभाल लेंगे, कणक की बिजाई भी कर लेंगे, वातावरण के प्रदूषण भी नहीं होगा तो अपनी धरती की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। पर जे मशीन जितनी भी है मैं गलबात की तो इन्हों का हरेक का थोड़ा थोड़ा नुकता जे आप वो सानू पता होगा तो ही आप वो मशीन सही ढंग नाल चला सकते हैं और सही तभी उसकी सही वरतों होगी। तो ये दो तीन नुकते हैं जिहड़े मैं तुहानू दस देना चाहवागा। एक तो ये कि जो आप सुपर सीड नाल बिजाई करनी है पराली जी आप झोना वढाया वो SMS नाल वढाया हो, जे वो SMS कंबाइन फिटेड तो नहीं वढाया तो आपू पराल खिलारना पैना खेत के बराबर छोटे छोटे टुकड़े करके।

यूनिवर्सिटी के तहत यूनिवर्सिटी ने एक नया कटर ग्रम स्प्रेडर मशीन बनाई है, जिहड़ा जिथे मशीन की लाइना जिथे पुराल डिगदा जाता उस लाइना को कुतर के खिलारण का वो काम करती है। उसनों एक बार कमान लाइना के उपर रख के चला तो बाद आप सुपर सीडर ना बहुत चंकी तरीके बिजाई कर सकते हैं। दूजा ये ध्यान रखना है, जो आप सुपर सीडर बिजाई खेत के नमी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए है, वो क्यों होनी चाहिए है, जो भी आप इस पराल मिक्स करा जे उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर नहीं है, नमी ज़्यादा नहीं है, तो जोड़ा अपना पराल पहले जमीन के उपर है जो वो रोटावेटर ने मिक्स किया और नाल दी नाल बिजाई की, तो जो सुखा हुआ पराल जमीन में मिक्स होगा तो उसने नमी सोखनी है, और वो फिर जे नमी पहले ही घट है या पहले ही बिल्कुल बराबर बराबर सी तो नमी जी बीज जो तो जमना शुरू करेगा 2 दिन बाद उसनों नमी घट मिलेगी तो जमण की समस्या आ सकती है, वो कई बार देखने से भी आया है। तीजा आपां की कर रहे कि भी ठीक है भी पराल दे सुपर सीडर बहुत वधिया बीजी जाता, उतने ही व्डे क्यारियों के लंबे लंबे क्यारियों के वो बीज देंदे हैं, कि उतना जितना कणक का झोने का सीगा उसी क्यारे के सीधा सुपर सीडर चला के, पर किसान वीरों दिक्कत आऊगी जो आप पानी लावे उसमें पानी बहुत जो लंबा क्यारा एक ही हो गया तो क्यारे के जो स्टार्टिंग में हो गया लास्ट तक जाते जाते वो पानी बहुत ज़्यादा एक पोर्शन से ज़्यादा लगेगा, जिते पानी ज़्यादा लग गया पराल थले साडा जमीन दे विच है, पराल ने पानी सोखे रखना है जमीन तो ज़्यादा निकलना नहीं, तो उस टाइम पर कणक साड़ी पीली पैनी शुरू हो जूगी उदा निजात नहीं होना, तो इस करके थोड़े से गुरेज करके जो तुम बिजाई कर ली उसी जो झोने वाले तो क्यारे से उस तो छोटे क्यारे बना लो जो तुम कणक में पानी लाओ ताकि तो क्यारे दर क्यारे जल्दी पानी लग जाए, तो सुपर सीडर जो चला वरतों करनी है तो तुम अपनी जमीन मैं इस चीज़ पर नहीं कहना चाहता जब फिर भी मैं समझदा अपना फर्ज कि जो गल आती है तो दसना साडा फर्ज है कि किसान हर चीज़ बारे दस दिए तो जमीन जी है दरमियाना तो बाहरी होनी चाहिए है जी, क्योंकि ये जमीना दे विच नमी नमी होल्ड करन दी नमी रोकन दी नमी अपने अंदर रखन दी समर्था होंदी है, जे आपां हल्कियां जमीना जे सुपर सीडर की वरतों ज़्यादा करते हैं तो ये जिवें पराल मिक्स होया तो नमी सोख ली तो जमीन के अंदर समर्था नहीं है रेतली है तो नमी घट जाती है तो जम थोड़ा प्रॉपर नहीं आता, तो इन थोड़ी चीज़ों का तुम ध्यान रखना। तो जिहड़ी भी मशीन मैं तुहानू पहले गल कीती है जिहदे विच आपां पराल दे विच बिजाई करनी है ये सारी मशीनां लई एक गल है, उस दे विच आपां खास ख्याल ये रखना है कि जदों भी आपां खाद दी या यूरिया जिहड़ी पानी है जो आम वाही करके आपां बीजदे हां तां आपां की करदे हां पहले यूरिया छिट्टा दे दिंदे हां फिर पानी ला दिंदे तां यूरिया साडे बूटियां नूं या फसल नूं मिल जांदा, पर इहदे विच की करना है जदों भी तुसीं इन मशीनों नाल बिजाई कीती हैप्पी सीडर सुपर सीडर स्मार्ट सीडर या सरफेस सीडर ये भी जो तुसीं बिजाई कर ली उस तो बाद जो तुहाडी बारी आएगी भी आपां यूरिया खाद पानी है तो यूरिया खाद पानी लाण तो पहला पानी है, पानी इस करके है कि जदों आपां पराल दे विच बीजी गई है पराल की मलचिंग हुई हुई है पराल के उपर या पराल मिक्स हुई हुई है जदों यूरिया का छिट्टा दे देंगे तो पानी नाल घुल के वो थले चली जूगी और साडे बूटियां नूं मिल जूगी, नहीं तो जे आपां पानी पहले लाता पानी जीर जाना है जे यूरिया बाद च छिट्टा दिता वो तुहाडे उपर पई रहेगी जमीन दे विच नहीं जानी तुहाडे बूटियां नूं नहीं मिलनी वो सारा बाब बन के या जिहड़े भी नदी थोड़े मोटे जिहड़े उपर जड़त है उन्होंने मिल जाएगी तो साडी जिहड़ी पैदावार घटूगी। ये 2-4 गल्लां है जिहड़ी आपां सुपर सीडर दे नाल ध्यान रखनी है। इस तो बाद एक बहुत वधिया मशीन हैगी है पराली नूं संभालदी भी है काम वधिया करती है भरपूर ढंग नाल चलती पे पर लोगों नूं उहदा चलाण दा थोड़ा जिहा मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं पता है मैं ही सारा कुछ जानता पर फिर भी है कि अनगेलियां करके उहदा नुकसान ना क्योंकि मशीनां जिहड़ी बनी किसान नूं फायदे लई बनी है जे नुकसान नाल ठाणा तो फिर मशीनां की वरतों ना की जाए। इसी लड़ी के तहत एक उल्टावें हल है उल्टावें हल का लोग बस लियाए जिवें आम हल जोड़ते हैं चला लिया कर लिया लेकिन ये रिवर्सिबल एम बी प्लाओ है, रिवर्सिबल मतलब क्यों रखा कि उल्टावें जो दूजा चक्कर कड़ा घूम के आता तो एक ही समय दूजे पासे मिट्टी नहीं सिटता उसी तरफ मिट्टी सिटता जिस तरफ जाते मिट्टी सिटी है, वो इस करके कि जो आप बिजाई करनी साड़ी जमीन की समतल जिहड़ा प्लेन लैवल खराब ना हो और अपनी जी उस तो बाद जो आप बिजाई करनी है सुपर सीडर नाल या एपी सीडर नाल या जोड़ी मशीन वरतेंगे तो साड़ी बिजाई सही ढंग ना हो ऊंचा नीवा खेत ना बने, पर ये गलतियां किसान तो की हो जाती जो इसकी अटैचमेंट करते हैं एक तो इसको जो अटैच करना एक तो जमीन प्लेन धरती से रख के कढ़ना ताकि ट्रैक्टर के मशीन का लैवल बिल्कुल बराबर रहे, दूजे जो अटैच करना 3-point हिंक लिंक के नाल इस जो तुम पहला खब्बे हास वाली लिंक जोड़नी है उसमें थोड़ा सा गैप रखना 125 इंच का फिर सज्जे हाथ वाली लिंक जोड़नी वो एडजस्टमेंट दी होंगी है ताकि जो उस जोड़ो तुम्हें वो एडजस्टमेंट कर सको, फिर तीजा हिस्सा आ जाता टॉप लिंक का, टॉप लिंक जोड़न तो लिए जो तुम देखोगे अपने जोड़े भी उल्टावें हल उसमें 2-3 छेद दिते होंगे लोगों मैं कई जो मैं ट्रेन

0: एक दो डेढ़ डिग्री टैंपरेचर ज़्यादा रहता, तो यही मल्चिंग जो दिन में तापमान एकदम बढ़ जाता 30-32 तक पहुँचता, ये उन्हें छां पे लग छां दे दी है उस अपने जी बीजी भी कणक है जड़ा बूटे, तो इस करके बूझा वधिया मारता झाड़ वधिया निकलता तो पैदावार वधिया होंदी है। तो किसान वीरों ये कुछ गल्लां सीगियां जे आपां मशीनां दी सही वरतों सही ढंग नाल जो मशीन का फायदा खटना तो इन्हां दा गल्लां दा सानू पता होना चाहिए। आपां नूं चाहिए कि आपां जे साडे ठीक है मशीन लै ली सबसिडी ते मिलदी सीगी पर इहनूं वरतों करन दा नहीं पता तो फिर वह मशीन सानू फायदा नहीं देगी, उसका नुकसान आपां नूं मिलेगा। इन्हां दी मशीनां दी जो तुसीं और विस्तृत जानकारी लेना चाहते हो तो हरेक जिले दे विच कृषि विज्ञान केंद्र है, महकमा खेतीबाड़ी हैगे हैं डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर ते बैठे, उन्हां दे नाल तुसीं अपनी गलबात कर सकते हो। पर एक किसान वीरो मैं अपने वल्लों भी ते तुहाडे वल्लों भी सुझाव है ये ते जे आपां पराली दे विच कणक की बिजाई करनी है सब तो जरूरी चीज़ है कि जितनी भी कंबाइना चलनी है खेत दे विच उन्हां दे उपर SMS वाला पार्ट लग्या होना चाहिए। जे वो नहीं लगता उहदे बिना ही कंबाइना खेत दे विच झोना वड के आ जाती है। तो किसान वीरों जितनी भी मशीना मैं दस के चलिया तुहानू दुत बता रहा जिन्हों के बाद गलबात हुई है इन्हों चलाण च बहुत मुश्किल आती है, ये सही ढंग नहीं चलती बिजाई नहीं होंगी फिर हार के किसान वीर उही पुराना ढंग तरीका भी अपने खेत में अग ला दिए तो अपना अपनी कणक की बिजाई जी अपने आने वाले सीजन की मुख्य फसल है वो बिजाई करिए। पर किसान वीरों मैं तुहानू फिर कह रहा है कि पुराल तुहाडा कोई वधू खाटू मटीरियल नहीं है, ये तुहाडा घट्टो घट क्योंकि देखो हुण जदों आपां खेती कर रहे तो पहले आपां की पाते सी भाई यूरिया पाती पोटाश पाता पोटैशियम दे दिता फॉसफोरस पाता, हुण कितने छोटे तत् की घाट आई जाती है वो इस करके कि आपां कोई भी ऑरगैनिक पदार्थ अपने पर खेत दे विच नहीं पा रहे, रूड़ियाँ घट गई तो और साडे कोल ऑरगैनिक मैटर आ गया, ये साडे कोल एक कुदरती तौर पर बना बनाया ऑरगैनिक मैटर है जे आपां इसनूं जमीन दे विच मिला दीए तो लगभग लगभग 5-5200 रुपये प्रति हैक्टेयर आपां अपने बचा सकते, मतलब अपने पैसे तो आप देखो जो आप 10 किले की बिजाई कर रहे हैं तो 5200 रुपये आ गए तो 50,000 रुपये तो सीधा ही बचत है जेडे कि आपू खादा की पूर्ति करने वास्ते खरीदते भी जिंक कॉपर कोबाल्ट छोटे छोटे पदार्थों की स्प्रे करनी पैंती उन्हों का खर्चा बनता, तो ये सारी चीज़ा ऑटोमैटिकली कुदरती तौर पर साढ़े बूटे मिल जाएगी। तो SMS वाली कंबाइन किसान वीर जे आप चाहवे जे आप कोशिश करांगे तो बिना तुहाडी मर्जी तो वो खेत दे विच नहीं चल सकती, महकमा पूरी जोर ला रहा है कि मशीन चलन SMS वाली चलन ताकि अगे बिजाई कणक की सही ढंग नाल हो सके ते अपना खुशहाल जिंदगी पंजाब नूं हरा भरा प्रदेश दोबारा एक वधिया जिहड़ा नाम साडा गलत लाया जा रहा कि अग लगातार करते हैं इस तो आप बहुत सुचे ढंग नाल निजात पा सकते हैं।
1: पटवारी साहब कल दे प्रोग्राम तो दस दिओ जी।
2: जी कल दे प्रोग्रामां च तड़के 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च छोलियां दीआं किस्मां बारे जानकारी देंगे,
1: ठीक है जी।
2: शामां नूं 6:30 बजे दिहाती प्रोग्राम च पंजाब च लीची दी काश्त बारे जानकारी डॉक्टर सुखप्रीत कौर देंगे,
1: ठीक है जी।
2: हाँ जी ते मौसम दी कोई खास चेतावनी तो नहीं है,
1: ठीक है जी।
2: आपां चलिए जी।
1: जी जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही। दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी। फिर आया अक्टूबर 2001। गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली, तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा, व्यापारी पर अविश्वास क्यों, फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके। और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो की पहली डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ वो साहसिक प्रयोग आज 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक। ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है। लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक। इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूरदृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया। आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं।
2: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए काफी रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया। और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो वहां इकट्ठा हुए थे, उनसे प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लब्बो लुबाब नहीं, वो सीधी बातचीत की। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के सीएमडी से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष, गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात के राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो है वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है
1: जी,
2: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए या मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो

0: कई जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
1: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आईं बल्कि उससे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
2: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात को सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी करते थे और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पे किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइब्रेंट गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था उसको आप लिखे तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था, इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे। तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहां पे यहाँ पर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको हम आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप MOU साइन करिएगा और आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वहां के एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं था, वो देश में जा करके अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डाल दें, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक FDI प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा FDI की करें, सीमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए? चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना FDI की पहल और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
0: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं वो दो तीन चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहां की निवेश

0: पैदा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा दो या तीन चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपकी देश में आ रही हैं, आपके देश में आ रही हैं, उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें या जो सेंट्रल लेवल में जो भी एक्ट्स जितने बने हैं, कन्विक्शंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो निवेशक होता था या कंपनियां होती थी उनको कन्विक्ट कर दिया जाता था, इन सारी चीजों में जो मैंने एक दो तीन चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे एफडीआई लिमिट, ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% एफडीआई जो है जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब में वो 100% लिमिट हो गया है। एक दिन में सब कुछ बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो वो क्वेश्चन हो, या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर देखेंगे तो डेटा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि एफडीआई जो है हमारा बहुत बढ़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह से अभी काम चल रहा है, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए जो सबसे नया विधा है जो अभी आ रहा है, किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए आप, हर जगह एक इंडिया टेक प्लेबुक तैयार हो रहा है। और उसके जो दो बड़े पहलू हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंडिया टेक प्लेबुक में, एक सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज एंड टू द गवर्नमेंट इज रेडी, सरकार तैयार है, जो चीज आपको चाहिए आप मेरे से बात करिए, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट, ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और IFSCA की भी कर लेते हैं। IFSCA, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
2: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू है, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसा आपने कहा, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का,

0: बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारे जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इनहाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले FDI के बात कर रहे थे। ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें, और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी। उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था, और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम इस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का, तो आगे जाकर के वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है। और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में, तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले, फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो राजा रामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में यह कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें। और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो है दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या लंदन जा करके वहां पे अपना काम करें।
1: जी, कारोबार आसान, निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनोय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं, और जब से MSME की संशोधित परिभाषा आई है, ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
2: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन है, और ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है। अगर आप निचले स्तर पर, गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं, तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं है, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से, आपने कहा MSME के लेवल होते हैं, उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया, और जो क्रोर्स में जो पैसा है जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं MSME, वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए है कि जो MSME से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है। और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है वो स्काई रूट करेगा। जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के MSME के डेफिनेशन में चेंजेस हैं, या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है, तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है। दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है। तीसरी है जो सरकार से आप चले आइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है हमें, बाहर जाना और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चले जाइए। और हर अगले दिन जो है सरकार सेमीकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई है, जो कि सेमीकॉन 1 जो था जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में, उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मझोले उद्योग

0: जो है उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सारी चीजें आ रही हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो स्मॉल और स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मझोले उद्योग जो है आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखदार बिचौलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन जेम ने इस बिचौलिए तंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिकरण किया है। और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है और वो जैसे आपने आंकड़े बताए गवर्नमेंट की काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है ईनैम, उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGSND उसको कह करते थे वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस में भी उससे प्रोक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स भी प्रोक्योर करते हैं। और ये जो ग्रोथ हुआ है इसके पिछले कई साल पे, और उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, उसको हम ONDC कहते हैं
1: जी।
2: वो जैसे वो भी इनिशियल स्टेजेस में है, अगर वो बढ़ेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है, ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सुविधा होगी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। अगर वो ट्रेड से उसको भी जोड़ देते हैं तो ये जेम पोर्टल लेकर के और ONDC पोर्टल लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन सकता है।
1: जी हाँ, चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। और संतोष जी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिर्फ नियमों को ही आसान बनाना काफी नहीं होता है, जो पुराने बेकार नियम हैं उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को किया। सवाल यह है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है?
0: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
1: जी।
0: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेस को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में, जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस,

0: उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जनविश्वास 2 बिल आया उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो है अक्रॉस 16 मोर सेंट्रल एक्ट जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज रूल्स रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे और हजारों की संख्या में जिनकी जरूरत कोई नहीं है, अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है वो तो है, बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
1: दिलीप जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
2: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है, क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था और वो जो PM गति शक्ति बनाया और जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बनाया। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू ले करते थे जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी चीजें हुई, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होते थे, तीसरा ये GIS और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजोल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे और करीब 3000 इश्यूज एक दिन रिजोल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये PM गति शक्ति ने एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए। तो उसमें क्या किया था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल एस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना वो एक ज्यूरिसडिक्शन आता है, पोर्ट में दूसरा ज्यूरिसडिक्शन आता है, अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं, जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम कर रहता था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जैसे संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16-17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8-9% में ले आए हैं। दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17-18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से

0: लॉजिस्टिक पार्क से पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, ये पूरा जो चेन पीएम गति शक्ति में आ गया है, अब आप उसको बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो सेक्टर एसोसिएशन है, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गति शक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गति शक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था, और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
1: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की। इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहां आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है, और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में दिखेगी। 1.5 दशक की जो उनकी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। यही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन अभी तक जो आप ओल्ड एज इकोनॉमी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, आज आपको न्यू एज इकोनॉमी में ले जाना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2047 में भारत में जो ग्रोथ होगा और जहां भारत पहुंचेगा, वो टेक लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी होगा। अभी हाल में वित्त मंत्री ने कहा बेंगलुरु में कि सेमीकंडक्टर, एआई, ये सारी चीजें जो हैं देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले से करते हैं, एआई हो सेमीकंडक्टर हो। आगे का भारत जो 2047 का आप देखेंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा क्या ग्रोथ रेट होगा क्या होगा, पर टेक लेड ग्रोथ होगा। और 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे, जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है, और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
0: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें, तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, क्योंकि जहाँ पे पहले वो एक गेटकीपर थी, आके वो आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीजें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने से। अगर अब जो सरकार देखें, अब कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है। और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2047 में इकोनॉमी में काफी अंतर होगा, और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੀ ਕੱਲਾ ਜਾਇਆ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां कुमार सानू दी आवाज च दीवाना फिल्म दा एक गीत।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज थी आकाशवाणी।

0: ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ 62ਵੀਂ ਮਿਊਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
0: क्वाड दी मिसाल दिंदिया उन्होंने कहा कि उभरे दरमियानी पद्धर के देशों के प्रमुख ताकतों विचकार सहयोग संभव है। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सकत्तर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हालिया सालों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय खेत्र में किए गए सुधार ने। उन्होंने कहा कि दिवालियापन ते दिवालिया साबते दे पुनर्पूंजीकरण अते उसारू मेंबर निगरानी वर्गे सुधारों ने भारत के वित्तीय खेत्र को आर्थिक विकास के एक मजबूत थंब वजो उभरन के योग बनाया है। अज नवी दिल्ली कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2026 संबोधन करदे श्री दास ने कहा कि इस साल जून विच कुल गैर कार्यशील संपत्तियां घट के 1.68% रह गई ने, जबकि बैंकों के मुनाफे में काफी सुधार होया है। श्री दास ने कहा कि बाहरी खेत्र के सुचजे प्रबंधन ने समुची आर्थिक स्थिरता वाल भारत के यत्नों को भी मजबूत किया है। श्री दास ने कहा कि 2025-26 के चालू खाते का घाटा GDP के 0.6% के संभालने योग पद्धर अंदर बनिया हुआ है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 तहत आंध्र प्रदेश में 3 लाख मकानों के 3600 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। इस समागम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनोलॉजी की वरतों करके देश के पहले अजमायशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का नींव पत्थर भी रखा। इस तहत 14 करोड़ रुपए की लागत नाल 177 मकानों की उसारी की जाएगी। भारत ते कनेडा कल ओटावा विच तजवीज़शुदा व्यापक आर्थिक भाईवाले समझौते सेपा बारे गलबात दा पंजवां गेड़ शुरू करनगे। दोवें देश इस साल दे अंत तक इस व्यापारक समझौते नूं अंतिम रूप देना चाहुंदे ने। दोवें देशां दे मुख वार्ताकारां दी अगुवाई विच होण वाली 5 रोज़ा गलबात 9 अक्तूबर तक जारी रहेगी। गलबात दा चौथा गेड़ 18 सितंबर नूं नवीं दिल्ली विच होया सी। दोवां देशां दे अधिकारी हुण समझौते नूं अंतिम रूप देण दी दिशा विच तेजी नाल अगे वधण लई उत्सुक ने। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कारनी ने साल के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने का टीचा मिथ्या से। दोहां आगुओं ने नवी दिल्ली में हुई एक मीटिंग दौरान ऊर्जा ते महत्वपूर्ण खनिजां दे खेत्रां विच सहयोग नूं होर मजबूत करने बारे सहमति प्रगटाई सी। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सटेंडल है @AIRRN जलंधर। ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪਰਵ ਕਸ਼ਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੋਸਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 2 ਸਾਲਾ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੁਕਮਣੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ

0: रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हुर्मुज जलरंग मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियाद।

0: ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
3: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
5: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR डिजिटल

0: साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में

0: अर्थात जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news

0: खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
1: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
0: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अंतहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
2: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो, हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ डेथ हो गई।
3: माय नेम इज कृष्णा विश्वास। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी एंड लाइक टू स्टोरी बुक।
4: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौदह से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। निवासी को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते, सब खुश रहते, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
5: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ। स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
6: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 79 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले तो मैं रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, और वो आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।

0: बह गया, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, बस गए उम्र का आकलन रह गया, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो यूएन

0: ये कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में कई सारे हैं।
2: केयर सिस्टम है ना, इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से भी जो चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों की। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली में, जिसको फैमिली वाले को समझना ही चाहिए कि स्टिल कि आप कितने साल तक जीते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, वो जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली में।
0: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूँ?
1: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
0: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम दशरथ भगत है, मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में हम लोगों का एक मनोरंजन होता है, मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
0: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि

0: कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहां मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
1: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं, और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास से, इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीने की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
0: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
2: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
0: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
2: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग, और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, हमें काम किया जाना बाकी है, इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह है कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। अब महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है, बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
2: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेवलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
0: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल

0: देता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं, यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा।
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
2: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
0: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है। और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखे थे भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात के। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग असल, एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
0: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता

0: से फोन पर बात करें। जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हो जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हो जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हो जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हो, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हो जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
0: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
2: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए, और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800894416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशवरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशवरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी यहाँ सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था, और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
0: आंकड़े जरूरी है, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार

0: में फर्क क्यों मिट जाता है। या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए, तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
1: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं। उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
0: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है। सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है। जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं। जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती। जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं। जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं। और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है, सुनने वाला कोई नहीं।
1: हमारे पास आंकड़े हैं,

0: बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
1: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
0: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
1: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
0: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
1: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
0: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
1: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार। आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं।

0: जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया
0: मोना। 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां, 6वां स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर 4था स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस

0: और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है, और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीत कर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मुना, हमने कमाल किया। पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है
1: जी। और कुश्ती के

0: मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव पेंच दिखाया, दो सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
1: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। दो गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
0: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, दो मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
1: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
0: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, तीन गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
1: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर तीन गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
0: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
0: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
1: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने दो पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी दो प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहां तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहां जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
0: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
1: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
0: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आए लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
1: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन

0: संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानते हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर हैं और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदकों पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए, तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना, स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का ये आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुन पेश है शास्त्रीय संगीत। आज इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे बीएस नारंग दा गाया राग हंस ध्वनि ते उस्ताद राशिद खान दा उपशास्त्रीय गायन ठुमरी आजा राजा राधा ब्रज चलो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉ. जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट

शाजी मंसूर की आवाज़ के नाल कीती है प्रोग्राम की शुरुआत। स्वागत करते हाँ प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप जी, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सिंह, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक ते बलवीर सिंह जी, जिला मुरादाबाद, पिंड दुलापुर, उत्तर प्रदेश तो स्वागत प्रोग्राम दे विच। ते सैक्टर स्टार तो जुड़ चुके हैं मोहाली चंडीगढ़ के सैक्टर स्टार तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका तो नाल ही उन्होंने शुभचंद्र बजाज, साहिल जी ते बिट्टा जी भी जुड़े ने। स्वागत थोड़ा प्रोग्राम दे विच। पिंड थाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता भी जुड़े ने जी। प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। कमल बालूजा जी, मधु बालूजा जी, सागर जी, उमंग, आकांक्षा, गुड़िया माहे ते इशिता अरोड़ा जुड़े ने जी, इन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत। मजनू कटेला दिल्ली तो प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे ने, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करते हाँ प्रोग्राम दे विच। अगला गीत इन्हां सारयां दी नज़र कर रहे हैं जी। गीत सुणांगे सुरेंद्र कौर ते डॉली गुलेरिया दी आवाज़ दे विच, एक सदाबहार नगमा।

लेखा ने पुठड़े तवे ऐसे ख्याल ऐसे बिंब शिव बटालवी दी कलम चो ही पैदा हुए ने। लेखा लेखता काले ने सारे कह लेंदे ने पर इस कालेपन नू सीधा ना कह एक कवि ही इस दे इस दृश्य नू या इस अंदर दे उस कहने नू अंदर दी उस पीड़ नू क्योंकि पीड़ नू जे किसी ने अज तक मैं ये कह लवा सिर्फ जे ये कहांगे ना कि पंजाबी पोएट्री दे विच पंजाबी कविता दे विच किसी ने इस तों वड्डा इस तों होर सोहना या होर इस तों चंगी जुबान भाषा दे विच किसी ने बयान किया होवे ते ये गल थोड़ी जी शिव दी इज्जत नू घटा सकती है। मैं कहांगा कि शायद ही किसी होर भाषा ले लईए या कोई मुल्क ग्रां कोई भी ले लईए पीड़ दे इस बयान नू शिव ने जिस तरह बयान किया शायद ही कोई होर कर पाया होवे ते कह गया पीड़ा दा परागा पुन दे किसने मंगया है पीड़ नू बिना शिव तो। सुन रहे सी जी गीत फरमाइश आई सी शिव कुमार बटालवी दे इस कलाम दी।

ते अगली फरमाइश सानू आई है जी मिर्जानपुर गुरदासपुर जिला गुरदासपुर है ते पिंड जी मिर्जानपुर पेजरे ने जी उन्होंने ये फरमाइश उन्होंने सत्कार योग पिता जी जुझार सिंह माता जी हरजीत कौर ते उन्हां दी लाडली भैन महकप्रीत कौर जी के नाम है ते गीत की फरमाइश आई है जी हैप्पी राय कोटी का कोई भी गीत सुना दिओ अनमोल जोगर जी ने इस गीत की फरमाइश की है जी हैप्पी राय कोटी की तो शामिल कर लेते जी वडिंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी ने भी प्यार भरी नमस्कार भेज रहे हैं सरंदी बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा कांता राणी चरण रहेजा डैनू डैनी नीतू ज्योति सजनी भी जुड़ चुके हैं प्रोग्राम के सुखबीर सिंह छाजली जी स्वागत थोड़ा भी बहुत बहुत कोमलप्रीत रोशनप्रीत समेत संगरूर तो जुड़े ने साढ़े नाल प्रोग्राम के लो जी अगला गीत सुनते हैं मुहब्बत हैप्पी राय कोटी की आवाज़

0: चलिए जी प्रोग्राम स्वागत एक बार फिर तो स्वागत करता हाँ साढ़े सारे ही श्रोतियों का। मैं हरप्रीत इस प्रोग्राम दे विच बने रहांगा तुहाडा साथी जी ठीक एक बजे तक का। स्वागत करते साढ़े अगले फोन कॉलर का। स्वागत जी बहुत बहुत
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, की हाल चाल?
1: ਵੀਰ ਜੀ ਵਧੀਆ।
0: ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ
1: ਜੀ? ਵਧੀਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
0: ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਜ?

चलरी प्रोग्राम स्वागत व्हाट्सएप के जरिए पैरा जा सुनेहा भेजियारी सानू पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता राणी जजोरिया गगनदीप आरजू जजोरिया ते गुड्डू जी ने इन्हों का स्वागत करते हैं। तो गाँव फ्रांसी जिला हिसार तो राजकुमार दूधी प्रमोद कुमार दूधी तो पुष्पेंद्र कुमार दूधी ये भी जुड़े ने प्रोग्राम दे विच करदे हैं इन्हों का स्वागत। नीरा महला पटियाला तो साढ़े नियमित स्रोतिया जो जी एक मुकेश बत्ता जी नीरम बत्ता जी नितिन पलक करण गीतु निहारिका ते हार्दिक भी जुड़ चुके हैं इन्हों का भी स्वागत। तो फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा समेत जी एस रामगढ़िया जुड़े हुए हैं जी। बिल्कुल तुहाडी फरमाइश क्योंकि तुहाडा सुनेहा आया पर एक फरमाइश पूरी करन तो बाद जी मैं तुहाडी फरमाइश जो मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ की गीत दी है मैं कोशिश करांगा इस गीत तो बाद तुहानू एक गीत सुना देवां। अगला गीत सुनते हैं जी सतेंद्र सताज की आवाज़ के

असा टूर न पराए अज मुल्के, असा टूर न पराए अज मुल्के, नी गंगी ये बदामी रंगी, नी रोका पावी ना रिजक टुकरा, मैं सोने दा

हल सोने देते चांदी दिया पहलिया हल सोने देते चांदी दिया पहलिया ते उग देने लाल ते हीरे निरोका पानी ना रिजक टुकड़ा भी ना मैं सोने दा।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात। अगला गीत सुन रहे हैं दलजीत दोसांझ दे गुरदास मान दा गाया होया।

0: सुनील सिटी गुरदास मान दी आवाज़ विच ए गीत सहेलियां। अगले फोन कॉलर जुड़े ने साढ़े नाल जानते हैं जी उन्हों का हाल चाल ते कौन ते कित्थों गल कर रहे ने। स्वागत जी बहुत बहुत तुहाडा।
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल?
1: बस ठीक है।

प्रोग्राम स्वागत दे आखिरी बढ़ावल बद रहे हैं जी समा 6 मिनट का बाकी है इस प्रोग्राम की समाप्ति इस गीत नाल करदिया होया अगले हिस्से दे विच गीत संगीत इस सिलसिले नूं इसे तरह ही जारी रखांगे जुड़े रहना है तुसीं इसे तरह ही आकाशवाणी पंजाबी दे इस प्रोग्राम दे सिलसिले दे नाल सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
1: कोट पेंट तो पाके फिर लिखन न जाने उड़ा कोट पेंट तो पाके फिर लिखन न जाने उड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर हा ना पले लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर हा ना पले।

ठाणा दे तू कीता वादा, चाड़ के ले आऊं मैं ठाणा दे तू कीता वादा। थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा, थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा। वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा, वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा।

आसे पाने भी तू एवें मुँह कर लेना मोटा, लड़न मरन ते उतर आना जो पुत्र या छोटा, लड़न मरन ते उतर आना जो पुत्र या छोटा।

अकाल पुरख प्रभु सारी सृष्टि दा करता तरता है, कुल कायनात उस असीम प्रभु दी आराधना करती है। हाँ, अपने विचार अनुसार विधियां वखो वखरियां हो सकदियां ने, पर सबना दा इष्ट अकाल पुरख है। उस प्रभु दा परापूर्बला नाम सतनाम है। उंज तां उस दे अनेकां गुणा करके नाम भी अणगिणत हन। प्रभु दा नाम मनुखता दा आधार है। नाम कल्याणकारी ते सर्वहितकारी है। ये नाम हर प्रकार नाल सहाई है। साध संगत विच जाके जपियां सारे कारज संपूर्ण हुंदे हन। इस नाम नू बहुत सारे दृष्टांत दे के वड्याया गया है। नाम डुबदे लई बेड़ी है, बुझ रहे दीवे वास्ते तेल है, अग्नि नू शांत करन वाला जल, भुख नाल विलकदे बालक लई दुध है, रण खेत्र विच नाम नाल खड़े होण वाला भरा है, भुखे लई आहार, किरसानी लई

मेघ है, शेरवांग निडर है, रख्या है नाम, नाम दी उपमा तो बहुत है। प्रभु आप ही उपमा जानदे हो, पवित्र करन वाला नाम सिमर के पवजल तरिया जा सकता है। राग तिलंग विच उचारे शब्द विच भगत नामदेव जी नाम नू नेत्रहीन मनुख लई डंगोरी बयान करते हैं, ते नाम नू निमाणिया गरीबां दे जीवन दा आधार दसते हैं। सच्चे नाम वाला प्रभु करम करदा है, रहमतां दा खजाना है, सर्वव्यापक ते सदा अंग संग रहण वाला प्रभु अते उसदा नाम है। हे प्रभु, तू जीवन दाता सब कुछ देवनहार है, तू धनवान है, ये समर्था किसे होर विच नहीं है, तू सियाणा सब कुछ देखण वाला है। मैं तेरी की बात करा, नामदेव दे स्वामी प्रभु हरि तू ही है। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सरण करदे हां प्रोफेसर दर्शन सिंह अते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: कंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। इस शब्द का गायन किया सी प्रोफेसर दर्शन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। इस लोक विच संसारी जीव रोगी हन, रोग रहत सिर्फ अते सिर्फ सच्चा गुरु है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। असल विच संसारी जीव जो प्रभु दे निकटवर्ती नहीं, वह विकारां दी मैल कारण अपवित्र हन। क्योंकि संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना। पर जे जीव सदा प्रभु दा नाम जपे तो फिर कोई रोग नेड़े नहीं आउंदा। क्योंकि नाम के तारे सगले जंत, नाम सारे रोगां दा निवारण करता है। ते ए नाम रूपी औखद देण वाला प्रभु दयालु है। बस लोड़ है उस प्रभु अते उस दे सच्चे नाम दी बरकत वड्याई नूं जानन दी। तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नाम दी महिमा बयान करदे ने, औखद तेरो नाम दयाल। ये वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर अमरजीत सिंह।
1: सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस पावन शब्द की पहली ही पंक्ति साडे सामने जीवन का एक बहुत डूंगा सच रख दिंदी है। औखद तेरो नाम दयाल, भाव हे दयाल प्रभु तेरा नाम ही मेरी दवाई है। मनुख जदों बीमार हुंदा है तां दवाई लभदा है, शरीर विच दर्द होवे तां डाक्टर कोल जांदा है, मन विच बेचैनी होवे तां किसे नाल गल करदा है, अते जदों जीवन विच कोई वड्डी मुश्किल आ जावे तां किसे आसरे दी भाल करदा है। पर गुरु साहिब सानूं इक अजिही औखद

बिन सतगुरु किरणा पाया सतगुरु चा प्रख्योण कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।

लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण, जिन करते करना किया लिखिया आवन जान, नानक मति मिथ्या।

दान करे सचता मर जानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तोए नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले हो।

0: ज्ञानी विजेता है। सात जुग रा संतोखा धर्म ग्रथवा हो त्रे तेरा जते का जोर ग्रथवा द्वापर तपे का सत ग्रथवा काल जुग रा थगन का पूड ग्रथवा ओ भला पहला
1: साम का स्तंभ स्वामी सच में अच्छे सह रहे सब कुछ सच समावे रिक कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नायले प्राशित जाहे नान तो मुखंतर पाहे जुज में जो छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अतर मन हुआ नाम खुदा ये लो भया नील वसले कपड़े पहरे

0: गुण गावे नवनाथ धन गुरु साज समायो माँ दादा गुण रवे जेन चकर वै कहायो गुण गावे बलरा सपत बताल बसंत पर सरगुण उच्चर सदा गुर संग्रहंतो दूर बापुर अंग्र गुरु नानक जस गायो कब कस जस नानक गुर कट कट सहज समायो कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विस्तृत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम न परिए ब्रह्मा दर्शन काद से गुणंत न पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्वरो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
1: आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो।

क्या करे आपे हर पत अबनासी अबगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक अन्नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हाँ के बल बल बल बल

संभो पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो, श्री गुरु रामदास जय।

आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर खो जंत फिरे, अब नासी अचल।

ਆਜਾ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ।

0: जगत जस संचरयो सो कवण कह, सो कवण कह श्री गुर मोयो।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पीवन की, बंछत सिद्ध गो बिद मिलायो। पूरन पाओ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दहन दिस्तायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसगरस कठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोर।

आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवे अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत।

भूले सोते दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत

अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसमदी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वन्यन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी क्या सुनेंदो कूड़ वन्यन पावन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी शांत तिन कोल कुमाई जिन प्रभ

शीश सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आई।

जेने प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइण लोई डिठ प्यास ना बुझै मूकणी नानक से अखड़ियां बेआने

Yeah.